5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब

0: से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। सफलता हमारी नियंत्रित योग्यता तथा व्यक्तियों को अनुशासित करने की शक्ति पर निर्भर करती है। विचार मंथन में यह था आज का सुविचार और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे मातृवंदना, और अब कार्यक्रम का ये भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। स्वर है नरेंद्र चंचल का।

कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी की आवाज में कवि नारायण अग्रवाल नारायण का लिखा ये भक्ति गीत अभी आपने सुना और यह कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना स्वर है ए हरिहरन का।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए चिंतन। आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का है और वाचक हैं माधवी येंडे।
1: रहीमन दोनों एक से जब लो बोले नाहीं, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। मनुष्य की पहचान परख बातचीत से होती है। व्यक्ति सभ्य सुसंस्कृत शालीन समझदार और विद्वान है या अहम से ग्रसित ढोंगी और ढपोल शंख है, इसका परिचय उसकी बातचीत से ही हो जाता है। परस्पर व्यवहारों की शुरुआत बातचीत से होती है और बातचीत से ही काम सधते हैं और बिगड़ते रहते हैं। गहराई से देखें तो बातचीत यूं ही नहीं शुरू हो जाती। बातचीत का सिलसिला चिंतन से शुरू होता है। मनुष्य कुछ बोले इससे पहले उसके हृदय में विचार घुमड़ रहा होता है, आगे वो उसी पर बात करना शुरू कर देता है। समझदार व्यक्ति कुछ बोलने से पहले अपनी बात को परिस्थिति और परिणाम की तराजू पर तौलता है फिर बोलता है। अनपढ़ व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कह उठता है। इसीलिए कहा गया है, बोली एक अमोल है जो कोई जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। आज हम बिना विचारे कुछ भी बोलते रहते हैं कि हमारी बात उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कुठाराघात कर रही है। हम तो सिर्फ उपदेश देने का कार्य करते हैं। वाणी एक पूंजी है। जैसे हम धन खर्च करते समय सोचते हैं, वैसे ही हमें बोलते समय भी सोचना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि जहां एक शब्द से काम चल जाए वहां दूसरा शब्द उपयोग मत करो। यदि आप इस कला में पारंगत होना चाहते हैं तो पहला उपाय है शब्दों को चुनना, प्रभावी शब्दावली का चयन, संक्षिप्त और छोटे वाक्यों का प्रयोग, संयमित और शिष्ट भाषा का प्रयोग, एक अच्छा श्रोता बनना। यदि हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। जिह्वा पर नियंत्रण ना रखने से हम खुद को विपरीत परिस्थितियों में डाल देते हैं, अर्थात जिभिया ऐसी बावरी बग गई अकाश पतार, आपू तो कहीं भीतर भई जूती खात कपार। बोलती जीभ है जूते तो सिर पर पड़ते हैं। बातचीत में चाहिए मधुरता और शिष्टता। व्यवहार और बातचीत चाहे मित्रों के साथ हो चाहे अजनबी के, हमारे व्यवहार में सज्जनता और शालीनता दृष्टिगोचर होनी चाहिए। यदि कोई बात या व्यवहार मनोनुकूल ना हो तो भी हम आपे से बाहर ना हो, धैर्य का परिचय दें। दूसरे की कड़वी बात को भी इस दृष्टि से देखें कि यदि मैं इनके स्थान पर होता तो क्या करता। कोई प्रतिकार कर

0: करने के पूर्व सोचें, समझें और विवेक से काम लें तो लड़ाई झगड़े का अवसर ही ना आए। लोग प्रायः स्वयं का बड़प्पन सिद्ध करने के लिए अपनी शेखी और शान बघारते रहते हैं, बेसिर पैर की बातों के पुल बांधते रहते हैं। उनका उद्देश्य संगी साथियों को प्रभावित करना रहता है। जरूरी यह है कि बातचीत में यथार्थ हो। कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें करना अपना कद छोटा करना है। बातचीत के सिलसिले में सिर्फ एक व्यक्ति ही ना बोलता रहे बल्कि औरों को भी बोलने का अवसर दिया जाए तो सभी के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। समूह में बातचीत करते समय ऐसे विषयों पर बातचीत शुरू ना की जाए जो व्यक्ति विशेष से ही संबंधित हो, बल्कि सार्वजनिक हित की बातें हों और उन पर विचार विमर्श सबको लाभकारी हो सकता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का था और वाचक थी माधवी येंडे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर हैं अनुराधा उत्तराकेलकर और अनूप जलोटा के।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर थे उत्तरा केलकर और अनूप जलोटा के। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि सामयिकी की, विषय मक्का और सोयाबीन की सह फसल।
1: किसान भाई बहनों, हमारे लिए ये आवश्यक है कि खेती में अन्न वाली फसलों के साथ साथ दलहन, तिलहन, साग सब्जी, नगदी फसलों का समावेश करें। अब देखिए ना, हमारे पास इतनी अधिक भूमि नहीं होती है कि हम अलग अलग भूखंडों पर जोखिम उठाकर आवश्यकता अनुसार अलग अलग फसलें ले सकें और उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद, पानी और अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर सकें। दूसरे मौसम की प्रतिकूल दशाएँ होती हैं, कीड़े, बीमारियां, इनके प्रकोप से यदि फसल को हानि होती है तो दूसरी फसल यानी कि जो अंतर्वर्ती फसल ले रहे हैं इसको तो कम से कम बचाया जा सकता है। यदि हम एक प्रकार की फसल उगाते हैं तो सीमित आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकेगी, इसके अलावा एक फसल एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व का अवशोषण करती है तो उससे भूमि में उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अंततः यह होता है कि हमारी फसल की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा दूसरी फसलें इसी मौसम की होती हैं, जैसे अरहर है, ज्वार है, जो कि आपस में सहयोगात्मक सुरक्षात्मक रुख अख्तियार करती हैं। जैसे अरहर के साथ ज्वार लगाने से ज्वार की जड़ों से ऐसे तत्व निकलते हैं जो अरहर के उकटा रोग को बढ़ने नहीं देते हैं। इसका मतलब हमें सह फसल या अंतर्वर्ती खेती करने चाहिए जिससे कि हमारा जोखिम कम होता है। तो आज बात करते हैं मक्के के साथ सोयाबीन की अंतर्वर्ती या सह फसली की। मक्का की फसल प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होती है, इसीलिए इसे वर्ष भर किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। और रही सोयाबीन की बात, तो ये भी गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु में लगाई जा सकती है। तो पहली बात, इन दोनों को वर्षा शुरू होने पर लगा दें। बोने के पहले प्रयुक्त बीज को दवा से उपचारित कर लें। साथ साथ मक्के को एजोस्पाइरलम कल्चर और सोयाबीन को राइजोबियम कल्चर से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। मक्का और सोयाबीन की दोनों ही फसलें कतारों में बोई जाती हैं। मक्का को 45 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करें और इन दोनों कतारों के बीच 2 कतार सोयाबीन की बुनी कर दें। इन दोनों फसलों को पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए उचित उर्वरक दें। मक्का और सोयाबीन को फास्फोरस और पोटाश की समान मात्रा की ही आवश्यकता होती है, यानी 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की मदद से दे सकते हैं। इन दोनों उर्वरकों को नत्रजन की 1/3 मात्रा यानी कि लगभग 30 किलोग्राम नत्रजन बोनी के समय खेत में मिला दें। किसान भाई बहनों, ध्यान रखें कि खाद और बीज एक साथ बिल्कुल ना बोएं, ऐसा करने से बीज का अंकुरण घट सकता है। नत्रजन की बाकी मात्रा को बोनी के 1 माह के बाद मक्के पर मिट्टी चढ़ाते समय, निराई गुड़ाई करते समय मक्के की कतार के साथ साथ डालें। ऐसा करने से मक्के को दी गई नत्रजन का पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। और ध्यान रखें कि जब हम नत्रजन यूरिया के माध्यम से खेत में दे रहे हों तब खेत में पहले से नमी होना जरूरी होता है। अब जो नत्रजन का या यूरिया का

0: तीसरा भाग है, इसको मक्के पर नरमंजरियों के निकलते समय देने से भुट्टों में दाने अच्छे भरते हैं और सभी भुट्टों में दाने भर जाते हैं। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ मक्के को जस्ते की भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट बोनी के समय ही खेत में मिला दें। और सोयाबीन को गंधक की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो फास्फोरस दिया जाता है वह सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा दें। ऐसा करने से फास्फोरस के साथ साथ गंधक भी सोयाबीन को मिलेगा और अलग से गंधक देने की आवश्यकता नहीं होगी।
1: मक्का और सोयाबीन की सह फसल कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसथार में सुनिएगा डॉक्टर बैजनाथ गौतम के गाए राजस्थानी लोकगीत। नौ बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

10:05 पर सुनिए वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी और 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दस बजकर 20 मिनट पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा आप सुन सकते हैं।

11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जो कि आप सुनेंगे सभा के समापन यानी दिन में 3 बजे तक।

दूसरी सभा की शुरुआत में शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 5:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। शाम 6:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से लिए कुछ देशभक्ति नगमे। शाम 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा किरण श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत।

शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा अनवर हुसैन की गाई चंद गजलें। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम आधारित रहेगा लोकगीतों की गम्मत पर।

रात 8 बजे सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

एक बार फिर आपको याद दिला दें, सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर बैजनाथ गौतम के गाए राजस्थानी लोकगीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर, इंदौर में करेंगे बीएलओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित। और प्रदेश में देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, शहडोल और शाजापुर सहित कई जिलों में बदले गए एसपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे। इसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीजी सेमी OSAT सेमी कंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में वे न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा करेंगे, जो 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे तीनों देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को जल भंडारों की निगरानी और विद्युत मंत्रालय को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के सहयोग से प्रदेश एक ऊर्जा दक्ष, हरित और

0: अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओमकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिनमें शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर का नया एसपी बनाया गया है। सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में भी नए आईजी की पदस्थापना की गई है, जिसमें मिथिलेश शुक्ला को सागर रेंज और चंद्रशेखर सोलंकी को नर्मदापुरम जोन का आईजी बनाया गया है। वहीं रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ 26,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हो चुके हैं। मंत्री ने इंदौर में टेक्सटाइल टेस्टिंग फैसिलिटी और जबलपुर रीवा में नए आईसीडी स्थापित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 13 स्थानों पर करीब 12,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालय पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदे की कथित अनियमितताओं को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी, इस दौरान वे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे 16 ग्रामीणों को पुलिस, एसडीआरएफ और हॉकफोर्स के संयुक्त अभियान से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम भानपुर में खेत में गए ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर गए थे। समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि इंदौर, देवास और सीहोर में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच मैनचेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम और अंतिम 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आपको समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत इंदौर जिले के मानपुर में पुलिस ने कल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मंदसौर पुलिस SP विनोद कुमार मीणा ने भी कल साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सार्थक ऐप में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा नियम विरुद्ध अटेंडेंस लगाने की गड़बड़ी पाए जाने पर CMHO भोपाल ने कार्रवाई की है। आगर मालवा जिले में आयोजित रोजगार मेले में 62 शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत सतना जिले के 262 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन कल हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना की गई। शिवपुरी जिले के कोलारस पेट सनवारा में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ

खिलाफ कार्रवाई के दौरान अवैध जुताई में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर और 2 कल्टीवेटर जब्त कर संबंधित पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। देवास के सिवनी अभयारण्य में आपसी संघर्ष में घायल हुए नरबाघ युवराज का भोपाल के वन विहार रेस्क्यू सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। जांच में बाघ के आगे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर और पिछले बाएं पैर में गहरा घाव पाया गया है, जिस पर 6 टाके लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, गर्मी और उमस के लंबे दौर के बाद अब राहत और सुकून का दौर चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। कहीं पर छिटपुट बारिश हो रही है, कहीं पर भारी बारिश हो रही है और भारी बरसात की चेतावनियां जारी हो रही हैं। कुल मिलाकर ये खबर राहत देती है, क्योंकि अगर जबलपुर की ही बात हम करें तो पानी के जो स्रोत हैं, जहां से शहर को पानी की सप्लाई होती है, वो करीब करीब उनमें जलस्तर काफ़ी कम हो चुका था। चिंता की लकीरें सबके माथे पर थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छी उम्मीद है और उम्मीद हम ये करें कि इस बार अच्छी खासी बारिश हो, क्योंकि बरसात वो आधारशिला है जिस पर हमारे प्रदेश की और देश की विकास की कहानी लिखी जाती है। और आज भी हमारे यहाँ के किसान आसमानी बारिश पर निर्भर करते हैं। और देखा जाए तो बहुत से छोटे छोटे देश हैं जिनसे हम जो बरसात के पानी का जो समुचित दोहन होता है या उसका प्रबंधन होता है, ये बातें सीखी जा सकती हैं। इज़राइल जैसा देश और उसका उदाहरण हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन जल का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, ताकि वो जो आसमान से ज़िंदगी बरसती है उसका समुचित उपयोग किया जा सके, उसकी एक एक बूंद हम सबके फ़ायदे में लाई जा सके।

दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई है तो वो है प्रकृति या कुदरत। कभी आपने सोचा है कि दो तीन बार की बारिश के बाद अचानक चारों तरफ हरियाली की चादर फैल जाती है और पलक झपकते कह सकते हैं कि सारा आलम बदल जाता है, एक सुकून का आलम चारों तरफ छा जाता है। ये कुदरत का चमत्कार नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ईश्वर की अगर हम बात करें तो दो तरह के लोग होते हैं। जो एक तरह के लोग मानते हैं कि कोई ईश्वरीय शक्ति है इस दुनिया में या ब्रह्मांड में, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, और जो मानते हैं उनके भी अलग अलग मजहब होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं। कोई उसे ईश्वर के नाम से जानता है, कोई विधाता के नाम से जानता है, कोई खुदा के नाम से जानता है, पर वो सारे लोग मानते हैं कि एक शक्ति ऐसी ज़रूर है जो इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। सबकी पूजा पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी इबादत के तरीके अलग अलग होते हैं। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखें। आप किसी पार्क में चले जाएं तो आप देखेंगे कि कोई दौड़ लगा रहा है, कोई योगासन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई ठहाके लगा रहा है, कोई उल्टा चल रहा है, कोई सीधा चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबका उद्देश्य एक ही होता है, सेहत बनाना, सेहत बरकरार रखना, लेकिन तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो ये सेहत की बात है, और सेहत बनाए रखने में सबसे अच्छा तरीका कोई है जिसमें कुछ लगता नहीं है, कोई उपकरण नहीं लगता, कोई आपको जिम की सहायता नहीं लेना पड़ती है, वो है सैर। सैर सपाटा कह लें, सुबह की सैर कह लें, शाम की सैर कह लें। और बहुत सारे समर्पित लोग आपको बारिश के मौसम में छाता लगाए हुए भी सुबह की सैर पर निकलते दिख जाते हैं। यकीनन ऐसे लोगों को सलाम करने का दिल करता है, वरना बहाने तो हज़ार होते हैं कि भाई बारिश हो रही, क्या किया जाए। लेकिन मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक व्यायाम का ऐसा तरीका है जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। रक्तचाप में आपको फ़ायदा होता है, शरीर की जो फिटनेस होती है वो बनी रहती है। तो अभी तक आपने अगर कोई भी तरीका ऐसा नहीं सोच रखा है व्यायाम का और व्यायाम को लेकर, तो निर्णय ज़रूर करें, और कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। उद्देश्य सबका एक ही है, अच्छी सेहत बनाना या सेहत को बरकरार रखना।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव भरी जिंदगी, दबाव भरे जीवन में दो बातें आपने महसूस की होंगी। एक तो सेहत बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, वहीं विरोधाभास इस बात का भी है कि अब सेहत को लेकर जागरूकता भी काफ़ी बढ़ चुकी है। आप सुबह सुबह निकलें, किसी पार्क में जाएं, तो बड़ी तादाद में आपको गृहणियाँ भी मिल जाएंगी, आम गृहणियाँ, और वो भी व्यायाम करती हुई दिख जाएंगी। ये एक अच्छा शगुन है, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं या गृहिणियाँ पूरे परिवार की सेहत को लेकर तो चिंता करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की सेहत को लेकर लापरवाह हो जाती हैं। और ये जिम्मेदारी घर के बाकी सदस्यों की भी है कि उनकी सेहत का समुचित ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो परिवार की धुरी होती हैं।

0: नए चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
1: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, इस दुनिया में न जाने कितने देश हैं, सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन जितनी विविधता हमारे देश में मिलती है शायद ही किसी और देश में या कहीं और नज़र आती हो। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब देश के कुछ इलाके बाढ़ से जूझ रहे होते हैं तो कुछ इलाके पानी की कमी से भी जूझ रहे होते हैं। कहीं पर सूखा पड़ रहा होता है, कहीं पर घनघोर बारिश हो रही होती है। क्या नहीं है हमारे देश में। कहते हैं कि हर 40 कोस में बोली, भाषा, खान पान सब बदल जाते हैं, उसके बावजूद हम सारे लोग एकता के सूत्र से बंधे रहते हैं। और कभी आप रेल के डिब्बे में बैठें, बहरहाल ये तो बहुत सामान्य सी बात है, और गौर करिएगा कि रेल का डिब्बा भी अपने आप में एक लघु भारत का पर्याय होता है। अलग अलग राज्यों के लोग वहाँ बैठे होते हैं, अलग अलग बोली, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, और सबका गंतव्य एक ही सीधी दिशा में आगे बढ़ता है। रेल उन्हें पहुंचाती है उनके गंतव्य तक। और ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो हमें इस बात के लिए जागरूक करती हैं कि हम बहुत से छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे विरोधों में, छोटे छोटे विरोधाभासों में अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर देते हैं, लेकिन हमारी जो खूबसूरती, हमारे देश की जो खासियत है वो एकता और भाईचारे में है। बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिलता है।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, विविधता की अगर हम बात करें और संगीत के संदर्भ में करें, तो संगीत के मामले में भी हमारा देश कितना विविधतापूर्ण और कितना अनोखा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबकी संगीत की शैलियाँ अलग अलग हैं। वैसे तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पर संगीत ना हो। और सबसे बड़ी बात, हैरत की बात ये भी कि कोई भी संगीत या संगीत की कोई भी पद्धति 7 सुरों से ऊपर बिल्कुल नहीं है। 7 सुर और कुदरत के 7 रंग, सप्त रश्मियों से बना इंद्रधनुष, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो भी कुदरती है, जो भी प्राकृतिक है और जिसमें संगीत भी शामिल है, क्योंकि अगर कुदरत से संगीत सीखा जाए तो चांद तारों की जो रवानी है और दिन और रात की जो लय है, वो भी तो एक लय में होती है। सब में संगीत बसा है, पंछियों की चहचहाट में, झरनों की कलकल में, सांसों की सरगम में, दिलों की धड़कन में, सब में तो संगीत है।

दोस्तों, हर मौसम के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जिनका आनंद कुछ और ही होता है। मसलन, अब तो साल भर भुट्टा मिलता है, लेकिन कभी आपने सोचा है या गौर भी किया होगा कि मई के महीने में आप भुट्टा खाएं, भले ही नमक, काला नमक और नींबू लगाकर, उसका वो आनंद, वो सुख आपको महसूस नहीं होगा जो बरसात के मौसम में होता है, और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखा जाए तो बारिश का मौसम खाने पीने के चीज़ों के लिए भी बड़ा शानदार मौसम होता है, लेकिन सेहत के नज़रिए से, पेट के नज़रिए से जोखिम भी जुड़े होते हैं। खासकर पीने का जो पानी होता है, उसको लेकर आप हमेशा इत्मीनान कर लें कि जो पानी आप पी रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद है, कितना सही है। और बाहर अगर आप खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो उसकी शुद्धता का भी ध्यान कर लें, क्योंकि छोटे छोटे संक्रमण कई बार चोर दरवाजे से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर गंभीर बीमारी के रूप में या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के रूप में उसका विस्फोट सामने आता है।

अभी इस मौसम में भी शादी की कुछ तिथियां हैं, तो शादी ब्याह में भी जाने के मौके बनते हैं और बनते रहते हैं। इसके अलावा वो सारे समारोह जहाँ पर सामूहिक खान पान से जुड़े आयोजन होते हैं, खासकर बरसात के मौसम में, उनमें फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें परिणाम के रूप में देखने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे किसी समारोह में अगर आप जा रहे हैं और खाना पीना भी खा रहे हैं, तो ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ध्यान रख के व्यंजनों का चुनाव किया जाए, क्योंकि कई बार स्वाद और जायके के चक्कर में पेट के साथ ज़्यादती हो जाती है और पेट त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठता है। तो सेहत है तो बाकी स्वाद है और उसका जायका है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और एक बात जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि पीने के पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, ज़रा सी भी आशंका अगर हो तो पानी को उबाल लेना सबसे अच्छा तरीका होता है, और उबला हुआ पानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा निरापद होता है। इन बातों का ध्यान रखें और समय समय पर ऐसी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं, और साथ साथ मनोरंजन भी चलता रहता है। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, कार्यक्रम को विराम देने का समय आ रहा है। तो अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, और सुनते रहें आपका अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। और इस कार्यक्रम से अब अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैनिक

0: कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम

वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम

0: क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तुम्हारे ही अंदर है? क्या देखते हो औरों में जब तुम्हारा मन ही दर्पण है? सपनों की गहराई को समझो, अपने अंदर की अच्छाई को समझो, स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन में कुछ बन के दिखा डालो। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी का स्वागत करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और बिना देरी के जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनवाते हैं आपको गीत अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़ और अमाल मलिक के स्वर में। फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी। गीत लिखा कुमार ने, संगीतकार अमाल मलिक।
1: ¶¶

आज 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देशभर में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ।

हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वो युवाओं के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व माने जाते थे। उनका जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित था।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
8: सच?
7: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको

0: माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ARTI केंद्र से ARTI ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लोगों को मानव सेवा का महत्व समझाया। उनका कहना था कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। वे शिक्षा और आत्मविश्वास को जीवन में सफलता का आधार मानते थे। उन्होंने युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने का संदेश दिया। वे समाज में समानता और भाईचारे के पक्षधर थे। उनके विचार ने लोगों में नई जागरूकता पैदा की। आज भी उनके संदेश लोगों को प्रेरणा देते हैं।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां दिए गए उनके भाषण की पूरे विश्व में सराहना हुई। उन्होंने दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के बारे में बताया। उनके विचारों ने लोगों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत किया। उन्होंने कई देशों की यात्रा करके मानवता का संदेश फैलाया। उनके प्रयासों से विश्व में भारत की पहचान और भारत का सम्मान बढ़ा।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का स्वर्गवास हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये संदेश आज भी युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाएं आत्मविश्वास, परिश्रम और सेवा का मार्ग दिखाती हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके जीवन और विचारों को याद करने का अवसर देती है। साथ ही ये दिन उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है आज, और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर बैजनाथ गौतम के गाए राजस्थानी लोकगीत। पहले सुनते हैं रूमाल।

0: आइए सुनते हैं हिचकी।
1: अब हिचकी रे मन, अब हिचकी अली जरे, अब हिचकी मरो आली।

आज के लोक रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं डॉक्टर बैजनाथ गौतम के गाए राजस्थानी लोकगीत। इन गीतों में आपके साथ तबले पर संगत की है सुरेश पाठक ने। आइए सुनते हैं कुर्जा गीत।

0: गीत स्वर है डॉक्टर बैजनाथ गौतम का।
1: जल भरियो हे बूढ़ा खाए, जल भरियो।

आज के लोक रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर बैजनाथ गौतम के गाए राजस्थानी लोकगीत। इन गीतों में आपके साथ तबले पर संगत की थी सुरेश कुमार पाठक ने।

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

गुलाम अली की आवाज़ में अहमद फराज की ये गज़ल आपने सुनी, और अगली गज़ल आपको सुनवा रहे हैं, शायर हैं मोमिन खान मोमिन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई चंद गजलें। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10 बजने को है जिले की चिट्ठी। अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि कम बारिश की आशंका को देखते हुए बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। जिले में किसानों को प्रीमियम बीमा कवरेज और दावा प्रक्रिया की भी जानकारी दी जा रही है। जिले में वीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस योजना के तहत रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। जल संरक्षण की दिशा में भिंड के उमरी गाँव का उमरेश्वर तालाब अब नई पहचान बन रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद, जलकुंभी और झाड़ियां हटाई गई हैं। इससे बारिश का पानी बेहतर तरीके से रुकेगा, गांव के लोगों को साफ पानी मिल सकेगा। ग्रामीणों ने श्रमदान कर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। भिंड जिले के शासकीय छात्रावासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षकों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कोचिंग का संचालन सुबह और शाम दोनों समय होगा। भिंड के आईटीआई महाविद्यालय में 30 एमपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 350 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर में कैडेट्स को हथियार संचालन, निशानेबाजी, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह का समापन मेडल वितरण के साथ हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते बेहगांव और भिंड की ग्राम पंचायतों के 11 पदाधिकारियों पर कुल 48,81,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। भिंड कलेक्टर ने मछली प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु काल घोषित किया है। इस दौरान नदियों और जलाशयों में मत्स्या खेत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को भिंड में होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। हर स्कूल से 3 विद्यार्थियों की टीम बनाई जाएगी और ऑनलाइन पंजीयन कराया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन तथा विरासत से जोड़ना है। भिंड जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत जन्म से 5 साल तक के करीब 2,70,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 2,248 बूथ और हजारों स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय एमजेएस महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कुल 153 आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 6 कंपनियों द्वारा 122 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। मेगांव में आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता में महिलाओं ने पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं के हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया और सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा मेगांव के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी वितरित की गई। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि इससे दूर दराज के छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा होगी। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रदेश सरकार की एमएसएमई प्रोत्साहन योजना छोटे उद्यमियों की सफलता की कहानियां कर रही है। घिरुंगी इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रमोद गुर्जर ने बताया है कि सब्सिडी की मदद से प्लांट विस्तार से उत्पादन क्षमता दोगुनी हुई है, जिससे अब लगभग 150 लोगों को स्थायी रोजगार मिल रहा है। वहीं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोनू धाकड़ और पूजा धाकड़ ने सोनाधिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर काजू प्रोसेसिंग में सफलता हासिल की, जिनके तैयार उत्पाद यूएई तक निर्यात होते हैं। इस इकाई में भी प्रत्यक्ष रूप से 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और एमएसएमई योजना के तहत मिले अनुदान ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है
1: और मीडियम वेव पर अब हैं आप आकाशवाणी जबलपुर के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

किसी विविधरंगी गुलदस्ते जैसा है हमारा देश, जिसका हर एक फूल रंग और खुशबू में अपने आप में खास और दूसरों से अलग है। उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। बोली, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज अलग, फिर भी सबकी पहचान एक, यानी भारतीय। और भारतीयता का यही जज्बा हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। वास्तव में नदियां, सागर, हरे भरे वन, रेगिस्तान और खनिज संपदा किसी देश का भौतिक स्वरूप होते हैं। उसकी सबसे बड़ी कसौटी होती है मानवीय मूल्यों से जुड़ी परंपराएं, जो किसी देश को सबसे अलग और खास बनाती हैं। इसके अलावा उसमें बसने वाले लोग, जो उसे देश के रूप में पहचान देते हैं। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:10 होने को है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब समाचार विस्तार से। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की 6 दिवसीय राजकीय अंतिम यात्रा तेहरान में आज से शुरू होगी। अधिकारियों को इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
1: ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिगफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। ये अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि श्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में होंगे।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की 4थी यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता जाने का भी कार्यक्रम है। योग्यकार्ता में श्री मोदी प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के समापन में श्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद।
0: गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित

किया गया है। 51 वर्षीय फुजिमोरी पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं और चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। थी इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू

0: प्रमुख मुद्दा था। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मुंटेनो को राष्ट्रपति माया सांडू ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मुंटेनो ने अपने इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति माया सांडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तब तक मुंटेनो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रपति सांडू विभिन्न संसदीय दलों से परामर्श के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगी। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 4 जुलाई को 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वाधीनता की औपचारिक घोषणा की थी। स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे दक्षिण यूरोप में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्पेन में कैटालोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग अब भी बेकाबू है, जिससे लगभग 2300 हेक्टेयर भूमि की वनस्पति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में लू के कारण 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण जून के अंत से अब तक 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया है। कोलंबिया के जॉन एरियास ने 14वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल किया। अंतिम 16 के मैच में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कनाडा के फेलिक्स ओगर एलियासिम ने अमरीका के माइकल झेंग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच महिला सिंगल्स में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला और कोको गॉफ के साथ साथ जापान की नाओमी ओसाका भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, अभिव्यक्ति हमेशा शब्दों की मोहताज नहीं होती। एक बात लाजमी है कि मौन की भी अपनी भाषा होती है और खामोशी की अपनी जबान। जब लब खामोश होते हैं तो बहुत कुछ बयान करती हैं आंखें।

और आंखें जब बंद हों तो फिर जज्बात अपना काम करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जज्बात भरा ये गाना हम आपको सुना रहे हैं, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है अभिनेत्री। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास, सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद।

मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गमाड़कर, सरिता गमाड़कर, सिद्धांत प्रिंस एकांश गमाड़कर, बहादुरा नागपुर से शैलेश गमाड़कर, वैशाली श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गमाड़कर, आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। आप सबको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

0: समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, मोटका माफी जिला खंडवा से हमारे श्रोता हैं। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मन, मानस और कनिका पटेल, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, कस्बा गुनौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा, भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और उनके परिवारजन, जैतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हमारे श्रोता हैं कैसर आलम, हिना कैसर और मोहम्मद वकील राही, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परु, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवारजन। ये चिट्ठी बन्ने बुजुर्ग पलेरा की है, टीकमगढ़ में ये रहते हैं हमारे श्रोता, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में है, बोल आनंद बख्शी के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है अनुरोध।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
2: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो।
3: असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी, एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही और सृष्टि राही, बिलहरी बड़खेरा से कटनी में आप सब रहते हैं संतोष ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, सुजीत बर्मन, अफसल खान, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन सपनी धेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, राजपुर से घिसु दिलबारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलबारे, आप सबको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत साहिर लुधियानवी का है, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है काला पत्थर।

तेंदुखेड़ा विद्यानगर दमोह से ओम प्रकाश नेमा, करण नेमा, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और उनके परिवारजन, क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन, बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल ढोमड़े, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबाशिरे, सिंहपुर बाड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि, साथ में हैं विवेक, वंदना और लवकुश, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, राउफ और शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कैफी आजमी के बोल, खयाम का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

गांधी चौक रोपड़, ये गांधी चौक बाड़मेर में राजस्थान में बबेश पवार, डैनी पवार मास्टर मनीष ने ये चिट्ठी भेजी है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सबकी पसंद पर आखिरी गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत, दूसरा आदमी फिल्म का नाम।

0: और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं। हम फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। वक्त हो रहा है न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में सहभागिता करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज इंदौर प्रवास पर रहेंगे। वे शाम 4 बजे लता मंगेशकर सभागृह में बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वे ओंकारेश्वर रवाना होंगे। राज्य सरकार ने 9 IPS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। रुचि वर्धन मिश्रा को IG ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदे की कथित अनियमितताओं को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान किया है। और भारत भवन में आज से कैन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिन भर की दौड़ धूप से बदन टूट जाता है, जब रात आती है तो हर शिकवा रूठ जाता है। शुक्र गुजार रहिए उस मुकम्मल नींद का श्रोताओं, जिसकी आगोश में आकर हर दर्द छूट जाता है। श्रोताओं, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ पाने की रेस में लगे हैं, पर क्या इस रेस से हम अपनी सबसे अनमोल चीज खो रहे हैं? वो अनमोल चीज है अपनी नींद। कहीं हम इसे तो नहीं खो रहे? क्या आपको पता है कि एक सुकून की नींद आपके कल को कितना बेहतर बना सकती है? आज हमारे इस फोन इन कार्यक्रम का विषय है कि नींद क्यों और कितना जरूरी है। तो फोन उठाइए, नंबर लगाइए और हमसे साझा कीजिए अपनी नींद के नुस्खे। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आपके कॉल्स का हमें है इंतजार। हेलो, नमस्कार।
2: प्रणाम मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटा जिला जालन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी बोल रहे हैं।
1: अमित जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी कॉल जी मान के चलिए कि 2 महीने के बाद आपसे व्यस्त होने के कारण हमने कॉल नहीं लगा पाई है मध्य प्रदेश भोपाल में। आज हमारी कॉल 2 महीने के बाद लगी है।
1: ये तो अच्छी बात है, 2 महीने के बाद लगी, आपकी कॉल लग गई है और आपकी हमसे बात हो रही है।
2: जी जी जी
1: जी। तो अमित जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: जी जी।
1: तो आज का हमारा विषय है कि नींद क्यों जरूरी है। क्या नींद जरूरी है ये भी बताइए, नींद क्यों जरूरी है अगर आप बताएं तो।
2: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने आज का विषय रखा है।
1: जी,
2: जैसा कि ये बताया जाता है कि नींद से अपने जो शरीर का जो मानसिक तनाव है वो दूर होता है और अपनी जो सारी जो क्रियाएं चलती हैं, यदि व्यक्ति कहते हैं कि कम से कम वो ज्यादा नहीं तो अपने कम से कम 8-10 घंटा भरपूर नींद तो लेना ही, लेकिन कहते हैं अति सर्वत वर्धते।
1: बिल्कुल सही बात।
2: कोई ज्यादा नींद लेता है तो कहा गया है कि भाई ये तो भाई कुंभकर्ण का काम कर रहा है, तो ज्यादा ही नींद लेना खराब होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ की अति खराब ही होती है। तो लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी तो हमें लेना ही चाहिए।
2: जी जी बिल्कुल मैम बिल्कुल।
1: अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। मान लीजिए आपको रात में जैसे कभी नींद नहीं आती, तब आप क्या करते हैं?
2: जी मैम, जैसे अगर रात में कभी नींद नहीं आती है
1: जी,
2: तो दो कारण होते हैं मैम इसके नींद का नाना। एक तो क्या होता है कि व्यक्ति जो अपनी जो दिनचर्या है वो या तो ठीक सही से, या मतलब अपने जो कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं कि जिनके कारणों से नींद नहीं आती है। तो बस हम यही करते हैं कि उतने समय केवल भगवान को ही समझना चाहिए कि भगवान, तो ये कहा जाता है कि क्योंकि पहले क्या होता था, अपनी जो माताएं होती हैं जैसे बच्चों को कोई लोरी सुनाया करती थी, थपली थप थप थप थप थपली, तो बच्चे सो जाया करते थे
1: जी।
2: तो ऐसा ही कुछ अगर अपन लोग जैसे नींद नहीं आ रही है तो कुछ अपन कुछ कर सकते हैं, तो शायद निंद्रा देवी कहा गया है निंदा देवी सुन ले और नींद आ जाए।
1: कहीं आप फोन का इस्तेमाल तो नहीं करते कि पता चला नींद टूटी और फोन उठाया तो नींद और चली गई। है ना, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। देखिए जी, अगर हमने फोन उठाया तो नींद का गायब होना बिल्कुल तय है।
2: तो मैम, हमारी ये मिसेज है पत्नी, वो कुछ और भी आपसे चर्चा करेंगी, आप करेंगे क्या उनसे बात?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बात करा दीजिए।
3: हेलो दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका नाम बताइए।
3: जी मैं पूजा तिवारी बोल रही हूँ।
1: पूजा जी, आपने विषय तो सुन ही लिया है तो।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या अच्छा विषय है। और नींद की तो मैं सच कहूँ, नींद के जो दौरान जो मस्तिष्क होता है ना, जो दिन भर की मतलब जानकारी हो, प्रेशिश हो या यात्रा, उसमें बदलाव भी आता है, जिसके ध्यान निर्णय लेने से क्षमता, जो क्षमता होती है ना सीखने, वो कौशल भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। दिन भर की थकान हमारी दूर हो जाती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सब स्वस्थ रहते हैं, हम
3: सब स्वस्थ रहता है। और नींद के सही से तो मानसिक

0: तनाव होते हैं, कोर्टिसोल होते हैं, मतलब नियंत्रण से करने से जैसे मूड अच्छा भी रहता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है दीदी।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं, है ना,
0: जी
1: और शायद एक छोटी सी चीज़ है ये नींद, उसको हम कहीं दरकिनार कर देते हैं।
0: आज की जो मतलब जनरेशन है, देखो फोन चलाना या मतलब टीवी बिना देखे नींद नहीं आती, कुछ
1: जी
0: कम
1: जी
0: किसी ना किसी को वो एक शौक बना लिया है, कुछ भी कह लीजिए एक
1: जी
0: तरह से। लेकिन हम लोग ही, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा योगा चलता है व्यायाम है, घर घर गृहस्थी है, घर का काम है, बच्चे हैं, तो हम जो योगा करते हैं व्यायाम करते हैं, तो इसे योगासन करते हैं, तो उसे नींद भी अच्छी आती है। नींद भी हम 9 घंटा अच्छी आराम से लेते हैं, टाइम से भी अपना उठते हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने एक समय अपनी नींद पूरी करी, रात की नींद पूरी करी, सवेरे आप एकदम फ्रेश, फिर
0: हाँ
1: अपने दिन
0: बिल्कुल।
1: भर के कामकाज के लिए आप तैयार।
0: और जो मतलब वजन का निमंत्रण होता है ना, नियंत्रण, जो वजन अपना बढ़ता है उसमें भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि नींद से जो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन संतुलन जाते हैं ना, पर्याप्त होने से मतलब वजन प्रबंध होता है, उससे क्या मदद मिल जाती है,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: वजन अपना जाना हो जाता है वो भी घटता है।
1: बहुत जानकार हैं, इसीलिए गृहिणी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, घर का मंत्री कहा जाता है ना।
0: जी जी बिल्कुल दीदी। और
1: आपने
0: यही हम अपने बच्चे को भी सिखाते हैं, वो भी अपना योगा वगैरह करता है, हम दौड़ने भी जाते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से केयर और ख्याल रखते हैं
1: बहुत
0: दीदी।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा जी। देखिए, अभिभावक जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं, है ना
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी। तो
0: वो
1: आप लोगों को
0: संस्कार तो
1: देख,
0: वहीं से आते हैं
1: जी
0: दीदी।
1: जी जी जी अपन को ही देना होता है, और वो
0: जी
1: देख
0: सही
1: के
0: बात
1: सीखते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें समझाने पे नहीं समझ में आती हैं, जब बच्चे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, और आप लोगों को
0: अगर
1: देखते हैं तो
0: बच्चों को बदलाव लाना है ना, तो बड़ों को पहले समझदार इतना बनना चाहिए कि पहले खुद को बदलो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
0: हम
1: सही बात कही
0: बदलेंगे तो
1: आपने
0: हमारे बच्चे खुद संस्कार देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं।
1: जी। आपने हमसे
0: जी
1: बात की, बहुत अच्छा लगा पूजा जी और अमित जी।
0: जी बिल्कुल दीदी, आपसे मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छी आपकी आवाज है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू,
0: जी
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद मैम, नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी। आपका नाम?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विजय पांडे जी,
0: विजय पांडे जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बलरामपुर से। मैं दो लाइन कहना चाहूंगा पहले।
0: जी बिल्कुल, कहिए।
1: जब मौसम बहार होता है, हर फूल खिलता है, खिल जाता है चमन मेरे दिल का, जब आपका प्यार मिलता है।
0: वाह,
1: आदरणीय आकांक्षा साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्ते विजय जी।
1: मैं विजय पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे काल को तस्लीम किए।
0: और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी, कुछ कहना चाहूंगा। कहा
0: जी
1: गया है कि हर रंग के फूलों में एक खासियत छुपी होती है, और उसी खासियत से उन फूलों का एक अलग पहचान में शुमार हो जाता है। इसी अपने रंग की विशेषताओं में कुछ फूलों का जिक्र करना चाहता हूँ।
0: जी
1: कहा गया है, सुर्ख रंग का फूल मोहब्बत की अलामत जाहिर करता है, जर्द रंग का फूल नफरत की अलामत जाहिर करता है, नीले रंग का फूल एक सच्चे दोस्त की अलामत जाहिर करता है, सफेद रंग का फूल पाकीजगी की अलामत जाहिर करता है, गुलाबी रंग का फूल मुस्कुराहट की अलामत जाहिर करता है। जी
0: बहुत बढ़िया जी। तो अब आपने इन सारे फूलों के रंगों की बात हमसे कर दी, अब आप हमारी बात पे अपनी बात कहिए। आज हमारा
1: जी
0: विषय है कि नींद क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, आप अपने
1: नींद
0: विचार बताएं।
1: इसलिए जरूरी है कि जब सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं,
0: जी
1: तो एक रात में एक अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छी वरदान साबित हुआ है,
0: जी
1: और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है नींद।
0: जी बिल्कुल
1: हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए।
0: जी, सही कहा आपने। अच्छा, आप बताएं कि अगर रात में नींद टूटती है तो आप क्या करते हैं? कभी टूटती है आपकी नींद रात में?
1: हाँ जी, टूटती है। टूटती है तो ऐसा है कि उन किसी एकाग्रचित होकर किसी
0: जी
1: के बारे में किसी अच्छी बातों को अगर सोचा जाए

0: हेलो, नमस्कार.
1: हेलो, नमस्ते.
0: नमस्ते. कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में आपका स्वागत है. अपना परिचय दीजिए.
1: जी मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा से.
0: सचिन जी, कैसे हैं आप?
1: मैम हम अच्छे हैं, आप बताइए कि आप कैसी हैं, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सभी लोग कैसे हैं.
0: सब बहुत बढ़िया हैं. और आज हमारा विषय है कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, और अच्छी नींद के लिए क्या आप कुछ करते हैं?
1: देखिए क्या होता है कि आजकल मोबाइल का समय है, तो तब तक नींद नहीं आती. मतलब ऐसी एक वो बन गई है आदत कि
0: जी
1: जब जब हम लेटते हैं काम के समय, तो मोबाइल को लेकर ही हम बिस्तर पर अपने लेट जाते हैं.
0: जो बहुत गलत बात है,
1: जी.
0: क्योंकि अगर हम मोबाइल को लेके सोते हैं तो आप देखिए, स्क्रॉल करते करते आपका कितना समय बीत जाता है आपको खुद पता नहीं चलता.
1: हाँ.
0: और फिर अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो समय स्वाभाविक है, बहुत देर हो जाएगी आपको, सोते सोते आपको लेट होगा, सुबेरे उठना है जल्दी.
1: जी,
0: तो
1: तो
0: फिर
1: फिर उसका प्रभाव हमें दिन में देखने को मिलता
0: बिल्कुल दिन में देखने
1: है
0: मिलेगा, मन चिड़चिड़ा होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, टेंशन रहेगी, नींद नींद भी आएगी. रात में पूरी नहीं होगी तो दिन में तो नींद आएगी, फिर आपका काम प्रभावित होगा.
1: बिल्कुल. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, काम
0: जी
1: के समय अपना एक समय निर्धारित करना चाहिए कि थोड़ा एक लिमिट होनी चाहिए मोबाइल देखने की. सोने से कुछ समय पहले से ही अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए.
0: जी देखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं होता, बल्कि वो हमारे शरीर का रिपेयरिंग मोड होता है. उस समय हमारा शरीर भी दिन भर की थकान को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे ना. तो नींद बहुत ज़रूरी है. हम अपने स्वस्थ रहने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन शायद नींद को कहीं भूल जाते हैं,
1: हाँ.
0: है ना? तो वो हमें नहीं करना है.
1: और मतलब आपने थोड़ा सोचना भी चाहिए सोते टाइम कि क्या करना है अब, और कल क्या करना है हमें, क्या हमने क्या आज किया, क्या नहीं हुआ आज, है
0: जी
1: ना.
0: जी अच्छी बातों को याद करिए, नींद भी अच्छी आएगी,
1: जी.
0: है ना? कई बार हम देखिए जब लेटते हैं तो कल की
1: तो
0: प्लानिंग होने लगती है, कल हमें क्या करना है.
1: और कभी कभी यदि मोबाइल ज्यादा चला लेते हैं तो वह चलता ही छूट जाता है और हमें नींद आ जाती है.
0: जी
1: ऐसा मैंने देखा है, हमारे साथ नहीं हुआ है ऐसा.
0: देखिए, नींद का भी अपना समय है. कई बार आप कुछ भी करिए, उसको आना है तो वो आ ही जाएगी, है ना? लेकिन हम क्यों समय अपना खराब करें मोबाइल देखने में? सोचना भी है तो अच्छी चीज़ें सोचें कल के लिए. कल का आप अभी से प्लानिंग कर लें कि हमें कल क्या करना है.
1: क्या करना है और
0: हाँ
1: कल क्या नहीं हुआ, तो
0: जी, आज हमारे से क्या गलती हुई, क्या अच्छा नहीं हुआ, उसको हम क्या सुधार सकते हैं, इस बारे में सोच के हम अपनी कल की नई शुरुआत के लिए आज की रात को बहुत अच्छे से गहरी नींद के साथ हमें बिताना होगा.
1: बहुत दिनों के बाद फोन लगा मैम, बहुत अच्छा लगा.
0: ऐसे ही अच्छा आपको लगता रहेगा. बस समय का ध्यान रखते हुए कुछ समय बाद आप पुनः फ़ोन करें और हम लोगों से बात करें.
1: नमस्कार.
0: नमस्ते सचिन जी. थक गई हैं आंखें, अब इन्हें आराम दीजिए. जिंदगी की उलझनों को यहीं विराम दीजिए. हसीन ख्वाबों का सफ़र शुरू होने को है. सुकून से सो जाइए और रात को सलाम दीजिए.

0: नमस्कार
1: नमस्कार नैन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। मैम, बहुत दिन में मेरा भी फोन लगा है। मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। बिल्कुल, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम।
0: तो आज आपने फोन लगाया है, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी बिल्कुल, फरमाइए आप।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है।
1: नींद का तो स्वभाव ये है कि इसका मानसिक तनाव से रहता है मैम। जैसे आप तनाव में है तो
0: जी
1: आपका नींद से बहुत कोसों दूर चला भगा देती वो चीज। आज जो सबसे बड़ा मानव जो है, युवा भी है वो, चाहे वो बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, सब मोबाइल में इतने मुतमइन हो गए, मोबाइल से इतने हो गए, तल्लीन हो गए कि उसको छोड़कर अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही है। अभी तक हमारे जितने भी श्रोता ने हमसे बात की है, सबका एक यही है कि मोबाइल हमारी नींद को हमसे दूर कर रही है।
1: बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया।
0: जी, हम मोबाइल पास रख रहे हैं और हम अपनी सेहत को अपने से दूर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सभी जानते हैं, तो कम से कम उसको सही टाइम पे हमें लाना होगा, उसे आना होगा। अच्छा, आप रात में अक्सर नींद खुल जाती है तो, या नींद नहीं आती है, तब आप क्या करते हैं?
1: मैम देखो, मैं तो एक इबादतगार आदमी हूँ और रेडियो को सुनता हूँ और पूरा परिवार के साथ सुनता हूँ। मैं एक काम में दिन में श्रमिक कार्य करता हूँ। मैं एक ऐसी कार का काम का हमारा है,
0: जी
1: उसमें जो वर्किंग जो कार्य होता है
0: जी
1: उसमें जो हम तल्लीन होते हैं, लोगों को अच्छा कार्य करने की कोशिश करते ताकि वो शीतलता में रहे।
0: जी जी
1: इसी तनाव में हम अपना मोबाइल से मैं इतना दूर रहता हूँ और बच्चों को भी दूर रखता हूँ, तो उससे ताकि अपने समय से पहले खाने से 7 बजे हम खाना खा लेते हैं और 10 बजे आराम करने की तरह चले जाते हैं, मालिक का नाम लेकर 9 बजे
0: बहुत
1: बाद।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: और उसके बाद 4:30-5 बजे हम उससे फारिग, नींद से फारिग हो जाते हैं और
0: जी
1: मालिक की बंदगी करते हैं। जो भी जिसके जिस धर्म से है, जो लोग लगे हुए हैं,
0: जी
1: उसको अपने कार्य में तल्लीन होना चाहिए।
0: बहुत बिल्कुल सही बात कही है आपने, और हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात से सीख लेंगे।
1: बहुत अच्छा लगा सर, आपका विचार भी अच्छे थे, आपका सवाल भी बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत
0: और
1: धन्यवाद आपको।
0: आपने हमसे बात की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ बने रहिए। नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात
1: हेलो।
0: आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: हेलो, मैं रूपा बासु बोल रही हूँ भोपाल से।
0: रूपा जी कैसी हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, सुहाना मौसम है और आपकी आवाज सुन के और सुहाना हो जाता है।
0: वाह क्या बात है, तारीफ कर दी आपने आते ही हमारी। रूपा जी, आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में हमारा विषय है कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: नींद हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि दिन भर की थकान, दिन भर की उलझने, दिन भर की सारी चीजें जो पूरे दिन भर में हमारा जो शरीर चलता है, अगर थोड़े समय के लिए हमें शांति ना मिले तो अगले दिन के लिए हम तैयार कैसे होंगे। तो इसीलिए नींद बहुत जरूरी चीज है एक स्वस्थ आगे जीवन चलाने के लिए।
0: सही बात है। आप नींद आपकी पूरी हो जाती है?
1: नहीं, माँ होने की एक ये बहुत बड़ी चीज है कि हम कोशिश तो करते हैं कि नींद हमारी पूरी हो जाए। जैसे स्वास्थ्य के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, पर माँ होने के बाद शायद वो पूरी नहीं हो पाती, बट हाँ ठीक है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, नींद पूरी करना जरूरी इसीलिए भी है कि हम नींद में होंगे तो ही कुछ अपने आगे देख पाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है। नींद को पूरा करने के लिए या नींद, अच्छी नींद लाने के लिए क्या आप कोई उपाय करती हैं?
1: उपाय करना मतलब मुझे लगता है कि अगर हम दिन भर अपने को ज्यादा ना सोचें, ज्यादा ना किसी चीज के लिए दिमाग अपना इस्तेमाल करें और सब चीज आराम से सबके साथ पीसफुली रहें, अच्छा खाना, हल्का खाना खाएं, फिर तो नींद बहुत सुकून से आती है। जब दिल भरा होता है तो नींद भी कम आती है। इसीलिए ना हम कोई तकलीफ ले ना ही किसी को दे, कोशिश करें कि शाम होते होते थोड़ा मधुर संगीत सुने जिससे आपको अपने शरीर को शांत करने की एक ऊर्जा मिले और फिर धीरे धीरे धीरे आराम से सो सके।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके रूपा जी,
1: धन्यवाद।
0: अच्छा कभी कभी जब नींद रात में खुल जाती है तो आपकी खुलती है?
1: बिल्कुल खुलती है,
0: तब
1: बहुत
0: क्या,
1: समय खुलती है।
0: तब आप क्या करती हैं? कहीं मोबाइल तो नहीं उठा लेती हैं?
1: नहीं, मोबाइल के साथ तो ऐसा है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, हम आजकल यही सोचते हैं कि जैसे ही नींद खुल जाए और हम फोन देख लें तो शायद कुछ वो करे, पर मैं 11 बजे के बाद अपना मोबाइल तो पहले ही छूती नहीं हूँ। और दूसरी चीज, अगर रात को नींद खुल भी गई
0: जी,
1: उठ के थोड़ी देर बैठ के थोड़ा पानी पी के फिर से कोशिश करती हूँ। और मैं ये बहुत करती हूँ कि उल्टी गिनती गिनना, उल्टी गिनती गिनते गिनते वापस नींद आ जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए मोबाइल तो गलत ही है, पास आता है और बहुत कुछ दूर हो जाता है मोबाइल के आने से। मोबाइल की जगह अगर कभी नींद खुले तो श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि वो किताब पढ़ें। कई बार देखिए पढ़ते पढ़ते भी नींद आ जाती है।
1: नींद आ जाती है, बिल्कुल नींद आती है। किताब से बड़ी चीज तो कुछ होती ही नहीं है और आप एकदम एक अपने उससे खो जाते हैं किताब के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाता है तो नींद आ ही जाती है।
0: जी, किताब पढ़ें, सुकून देने वाला संगीत सुने तो नींद का आना निश्चित ही है।
1: बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है और बहुत जरूरी चीज है हर एक के जीवन में नींद का होना, क्योंकि मैंने देखा है लोग सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती और कहीं ना कहीं अपनी उनकी मानसिक स्थिति आज बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि वो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में है कि नींद पूरी नहीं कर पाते।
0: जी,
1: तो मैं चाहूंगी कि सब अपना अपना समय निकाले कि सुकून से रात को सो पाए।
0: धन्यवाद रूपा जी आपका फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्ते
1: दीदी नमस्ते। अरे
0: नमस्ते। कार्यक्रम बाद आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासौदा से। बहुत
0: साहू जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, कैसी हैं आप?
0: हम भी बढ़िया हैं। मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम तो फिलहाल में पानी गिर रहा है गंज वासौदे में,
0: अच्छा, आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: बहुत बढ़िया है दीदी। हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम।
0: अच्छा, रात में नींद अच्छे से लेते हैं या नहीं?
1: नहीं लेते हैं दीदी, बराबर लेते हैं, 8 बजे आ जाते हैं सुबह, अभी 12 बजे निकलेंगे।
0: साहू जी, आज हमारे कार्यक्रम में विषय यही है कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, तो आप बताएं।
1: हाँ तो दीदी हमारा ये कहना है कि नींद तो बहुत जरूरी है। कहा
0: जी
1: है कि नींद बगैर कुछ नहीं हो सकता, नींद अगर पूरी नहीं हो गई कैसे काम चलेगा।
0: जी
1: बहुत जरूरी है नींद, तो बहुत जरूरी है और विषय अच्छा है।
0: हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है ना, हम स्वस्थ नहीं
1: बिल्कुल
0: रहेंगे।
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल, सही बात है सही बात है,
0: जी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे?
1: बिल्कुल सही बात है। हम तो दीदी ये है कि देखो हमें तो 8 घंटे की नींद हमें लेना है तो लेना है,
0: लेते हैं आप?
1: बिल्कुल बराबर 8 घंटे की नींद तो बिल्कुल लेते ही लेते हैं,
0: तो आप
1: बिल्कुल
0: अपनी नींद पूरा करें और स्वस्थ रहें, खुश
1: बिल्कुल
0: रहें। नमस्कार, कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम पप्पू सिंह बोलते हैं।
0: पप्पू सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बोलते हैं बारा जिला नरेनी तहसील से। जी दीदी, क्या कौन से विषय में है आज चैप्टर?
0: आज है नींद क्यों जरूरी है, आज का विषय है हमारा। नींद
1: जी,
0: हमारे लिए क्यों जरूरी है?
1: अब नींद जो है दीदी, थकान के लिए, और अगर व्यक्ति एनर्जी खर्च करता है, काम करता है, तो रिलैक्स होने के लिए भी नींद जो है लेनी पड़ती है दीदी।
0: क्या आप अपनी पूरी नींद करते हैं, लेते हैं पूरी नींद?
1: दीदी जरूर लेते हैं, हम करीब 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: अगर दीदी काम हुआ तो 8 घंटे, अगर काम कम हुआ तो 6 घंटे में नींद पूरी कर लेते हैं।
0: बढ़िया, फिर दूसरे दिन तो फ्रेश रहते हैं।
1: दीदी और कहते हैं सोना भी आराम है, आराम क्योंकि इसको जो है काम पर भी इसकी जो है गारंटी रहती है नींद की,
0: काम पर असर पड़ता है उसका अगर नींद पूरी नहीं होती है तो।
1: और ज्यादा नींद भी लेंगे तो भी काम पर असर पड़ता है।
0: जी, और नींद का एक फायदा भी है, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग
1: जी
0: जो होता है ना, वो दिन भर की यादों को सहेजता
1: जी
0: है ना, और सहेजना भी जरूरी है, और उनमें गैर जरूरी चीजें जो हैं उन्हें हमें डिलीट करते रहना होगा,
1: जी
0: अच्छी नींद पे फोकस करना होगा।
1: दीदी जो है नींद जो है जरूरी है हर इंसान के लिए, लेकिन इसकी अच भी बुरी है, और लिमिट भी जो है इसकी नींद की होनी चाहिए।
0: जी, किसी भी चीज़ की अधिकता तो खराब होती ही है। पप्पू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: दीदी।
0: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि सेहत की चाबी सिर्फ अच्छे खाने या कसरत से नहीं, बल्कि एक अच्छी और गहरी नींद में भी छुपी है। तो आज रात फोन को कहें बाय बाय और अपनी नींद को कहें वेलकम। सोते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीओ फोरम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। मध्य प्रदेश सरकार अग्नि सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। भोपाल में नगर निगम और अग्निशमन विभाग सुरक्षा मानकों की जांच के लिए संस्थानों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास विके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी और प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहले गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। गीत लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से। श्रोता हैं नियाज मंजूरी, सरताज बानो, उबैद जुनेद, अलीना, रजिया, मुआज और आयत। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से। श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा। अगले श्रोता प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से हैं। बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म पड़ोसन से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गौरी नगर इंदौर से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म फिजा से। इस गीत को सुरों से सजाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और विनोद राठौड़ के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म बाजीगर से। गीत लिखा जफर गोरखपुरी ने, संगीतकार हैनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बिलहरी बरखेड़ा कटनी से। श्रोता हैं संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़ई, फेरन यादव, मुन्ना खान एवं राम कुमार लोधी, संजयपुरी। अगले श्रोता रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया बेबी, आरजू जाजोरिया, ये पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: एक जरूरी सूचना। डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी गठिया रोग विशेषज्ञ एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2660901 एवं 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन व समय एक बार फिर सुन लें। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 एवं 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का तीसरा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: हेलो वेटर, वेटर इधर आइए।
2: यस सर।
1: क्या है कि मुझको तो जानते हो।
2: यस, हम आपको जानता है।
1: तो क्या है कि अभी हमने जो आपके होटल में खा लिया है, अपना पेट भरा, बहुत बढ़िया खाना आपका।
2: थैंक यू, थैंक यू।
1: थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया है कि हमारे पास जो पर्स है हमारा बटुआ, वो मैं घर पे भूल के आया हूँ। तो क्या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? क्या
2: हो जाएगा? नो प्रॉब्लम, आप चिंता मत करो, आप कल आके पैसा दे देना। बस आपका जो नाम है वो हम अब जो हमारा होटल का दीवार है उसमें हम आपका नाम लिख देगा, आप कल आके दे देना।
1: नाम हमारा होटल की दीवार के ऊपर लिखा रहेगा?
2: यस।
1: वेटर ये कितनी गंदी बात है, लोग देखेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगा, हमारा नाम लिखा होगा कि हम बिल पेड नहीं किया है।
2: नहीं, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, आपका नाम कोई भी आदमी पढ़ने को नहीं सकता।
1: पढ़ने को नहीं सकता?
2: इसलिए नहीं पढ़ने को सकता कि जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा उसके ऊपर हम आपका कोट टांग देगा।
1: अरे गोपाल, ओ गोपाल, अरे इधर तो आ भाई।
3: हम भाऊजी, नमस्ते भाऊजी।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: बोलिए भाऊजी,
1: और ठीक है? गोपाल, आज तो हमको गाना नहीं सुनाओगे? तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो।
3: नहीं भाऊजी, हम गाना नहीं सुनाएंगे, क्या है थोड़ा गले का प्रॉब्लम है।
1: गले का प्रॉब्लम? क्यों, गले में कुछ गड़बड़ हो गई क्या?
3: नहीं, वो गड़बड़ गले में नहीं हो गई, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे घर के बिल्कुल बाजू में एक पहलवान रहता है, उसने बोला है कि अगर तुमने दोबारा गाया तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। अरे आइए सेठ जी। नमस्कार, नमस्कार सेठ जी, आइए।
1: दुकानदार, क्या हाल चाल है?
3: बस कृपा है भगवान की, आपका आशीर्वाद है। ए लड़के, जरा कुर्सी लाओ बेटा, इधर यहाँ रखो कुर्सी, सेठ जी के लिए कुर्सी रखो। आइए सेठ जी, क्या बुलवाया जाए, चाय कॉफी कुछ? नहीं, पहले आप सेवा का अवसर दीजिए, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊ, लस्सी वगैरह, गन्ने का रस, आप जो बोले, बस आप सेवा का अवसर तो दीजिए।
1: वो तो ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, हमें तो आप पूछ रहे हैं चाय कॉफी के लिए और कोल्ड ड्रिंक के लिए और कुर्सी भी दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा नौकर आपकी दुकान में आता है तो आप उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, ना उससे कुर्सी में बैठने को कहते हैं, ना ही कि चाय वाय के लिए पूछते हैं। आपको मालूम नहीं कि वो मेरा नौकर है? अरे नगर सेठ की हवेली का कर्मचारी है वो।
3: मुझे मालूम है सेठ जी, वो जो आपका नौकर आता है ना, बिल्कुल मुझको मालूम। अरे नगर सेठ, आप तो पूरे पूरे देश में, पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। मैं माफी चाहता हूँ, वो गलती हो गई। आज से मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, कभी कोई भूल नहीं होगी सेठ जी, कतई भूल नहीं होगी। अरे आप तो नौकर की बात छोड़ो, आप अपनी बात छोड़ो, अगर आपके इलाके का, आपकी हवेली का अगर कुत्ता भी मेरी दुकान आ जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि आप मेरी दुकान पे आए हैं। एक आकाशवाणी के अनाउंसर साहब थे, वर्षों से काम करते आ रहे थे आकाशवाणी में, उनकी बच्ची का विवाह हुआ, उन्होंने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली, काम में लग गए। भाई स्वाभाविक है, शादी की तैयारी एक दिन की नहीं होती, उसमें महीनों लग जाते हैं, तो तैयारियां में वो अनाउंसर साहब लगे हुए थे, यहाँ से वहाँ इसको बुलाना, उसको बुलाना, ये कार्ड बांटना, वो कार्ड बांटना, ये भोजन बनवाना, यहाँ शादी की तैयारी, यहाँ पे कुछ करना, कुछ ये करना। अचानक एक दिन उनसे मिलने, यानी अनाउंसर साहब से मिलने उनके एक मित्र पहुँचते, आगे क्या होता है देखिए।
1: अरे भाई त्रिवेदी जी, ओ भाई त्रिवेदी जी, अरे त्रिवेदी जी।
4: नमस्कार, नमस्कार।
1: नमस्कार, और कैसे हैं त्रिवेदी जी?
4: ठीक है,
1: ठीक है
4: जी। हाँ
1: भाई, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा कि आपके यहाँ शादी ब्याह का मामला है, सो आपसे मिलता चलूं।
4: धन्यवाद।
1: और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे जरूर याद करें, मैं आपका कोई भी काम करने बिल्कुल तैयार हूँ।
4: धन्यवाद
1: त्रिवेदी जी, आप लोग तो कलाकार आदमी हैं भाई, वाह। जब भी मैं आपके कार्यक्रम देखता सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा मजा आता है। आकाशवाणी पर आपके कार्यक्रम तो सुन के मैं और हमारे सारे बच्चे और सारे लोग बड़े आनंदित होते हैं। साहब वाह, कोई भी काम हो आप जरूर याद करें।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुनाइए, मेहमान वगैरह तो आना जाना चालू हो गया होगा?
4: मेहमान तो बहुत सारे आ गए हैं।
1: तो अभी आपके घर में कौन कौन आ गया है मेहमानों में
4: इस वक्त?
1: जी हाँ,
4: इस वक्त हैं बिलासपुर से बंटी, पप्पू और उनके मम्मी पापा, नया गांव से रमेश, सुरेश, दिनेश और महेश और उनके ढेर सारे पड़ोसी, बरगी नगर से हैं रसीद चाचा और कौशल्या चाची, कटनी से हैं अखिलेश कुमार, कुंवर राजेंद्र सिंह, सारिका और उनके चाचा, चाची, पापा, मम्मी, दादा और दादी। किसी सज्जन की होने वाली थी शादी। उन्होंने सोचा कि चलो भाई अपनी पत्नी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जाए, कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम जानती है कि नहीं जानती है, उसका स्वभाव कैसा है, वगैरह वगैरह। इनकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो पहुंचे कहाँ, प्राइवेट जासूस कंपनी। और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी का फोटो दे दिया, उसका एड्रेस वगैरह दे दिया और जासूस कंपनी वालों को पैसे वगैरह दे दिए और कहा कि भाई आप हमारी वाइफ के बारे में पूरी जानकारी एक हफ्ते के अंदर हमको दे दीजिए। जासूस कंपनी ने एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक बड़ी बढ़िया सी रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, जिस लड़की की हमने जाँच की वो लड़की सुशील, सुंदर, गृह कार्य में दक्ष, स्वभाव में मधुरता, पढ़ी लिखी है, जिसके परिवार के अन्य लोग भी इस शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, मगर इस बात का दुख है कि भविष्य में जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वह सनकी, कम पढ़ा लिखा और आधा पागल है।
3: जैसा कि सबको मालूम है मेरा नाम है रजनीकांत त्रिवेदी, रजनीकांत त्रिवेदी। मैं हूँ पढ़ने का बड़ा शौकीन, तो मालूम हुआ कि सब बंबई में एक बड़ी बढ़िया पत्रिका छपती है। मैंने पत्र व्यवहार किया, पत्रिका आना चालू हो गई, लेकिन जो मेरा एड्रेस था उसमें वो लोग क्या लिख के भेजते थे, रजनी

0: श्रीकांत द्विवेदी। अब एक बार हो गया, दो बार हो गया, चार बार हो गया, मेरा एक दिन हुआ दिमाग खराब कि ये लोग करते क्या हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, त्रिवेदी को बना दिया द्विवेदी। मैंने एक पत्र लिखा, उसमें लिख दिया कि श्रीमान जी, मैं विगत कई महीनों से आपका प्रत्येक माह का ग्राहक हूँ और आप मुझे पत्रिका भेजते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आप त्रिवेदी के स्थान पर जो द्विवेदी लिखते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, हर बार आप मेरा एक वेद का नुकसान करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पत्रिका भेजना बंद कर दें। हफ्ते 10 दिन के बाद एक चिट्ठी उनके संपादक महोदय की मेरे पास आती है, उसमें क्या लिखा है कि श्री रजनीकांत जी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपको पत्रिका तो खैर मिलती है, उसकी आपने तारीफ की, इसके लिए धन्यवाद, परंतु हम आपको त्रिवेदी के स्थान पर द्विवेदी लिखकर, जो कई बार आपका हमने एक वेद का नुकसान किया है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, आगे के समय में जब भी हम आपको पत्रिका लिखे डालेंगे और उसका जो पता होगा उसमें द्विवेदी त्रिवेदी की जगह अब आपको लिखा जाएगा रजनीकांत चतुर्वेदी। जल्दी खाना बनता है, अच्छा बनता है, ये सब यहाँ वहाँ की बातें सुन के एक बुजुर्ग महिला पहली बार गई कुकर खरीदने, कौन सा कुकर जिसमें वो जल्दी खाना बनता वगैरह जो भी कुछ अपने को क्या करना, खैर कुकर खरीद के ले तो आई माता जी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये सब क्या है क्या नहीं। उन्होंने उसका इस्तेमाल दूसरे दिन से चालू किया, चालू किया, तीसरे दिन उस कुकर को लेकर पहुंच गई दुकानदार के पास और कहने लगी,
1: जे वाला कुकर तुम्हारी जो मशीन है, जे वाली मशीन आप वापस कर लो, हमें नहीं चाहिए।
0: तो दुकानदार बोलता, क्या हो गया माता जी, ऐसी क्या परेशानी हो गई कुकर में?
1: अरे कहले, तुम्हारा कुकर बहुत शैतानी है, बहुत मतलब बहुत ऊधम वाला है जे कुकर।
0: कहले कि मेरा कुकर ऊधमी है, शैतानी है, करता है ये सब, क्या बोले माता जी, समझ में नहीं आया। तो माता जी ने विस्तार से बोला,
1: कहले नहीं, जैसे ही हमने, हमारी लड़की जो 19 साल 20 साल की है ना, उसने जैसे ही जे वाला कुकर चालू किया तो थोड़ी देर के बाद तुम्हारा कुकर हमारी लड़की को देख कर सीटी बजाता है।
0: एक नए कलम घसीट लिख बैठे उपन्यास, एक पन्ने का, दो पन्ने का नहीं, अरे पन्ने की तो गिनती छोड़िए, उसका वजन था 3 किलो 900 ग्राम। अब लिख तो दिया, अब सोचते हैं वो ये कि भाई कोई इसको सुन ले, कोई इसको सुन ले, खैर चलिए ठीक साहब, उनकी मुराद पूरी हो गई। एक दिन पहुंच गए एक मित्र उनके पास और ये अपना उपन्यास लेके बैठ गए, कलम घसीट, 1 घंटा सुनाया, 2 घंटा सुनाया, 5 घंटा सुनाया, वो बेचारा जो सुनने वाला था वो आधा पागल हो गया। 8 घंटे हो गए सुनाते सुनाते, उसके बाद भी वो उपन्यास पूरा नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। खैर जो लेखक महोदय थे मिस्टर कलम घसीट, उनने अपने दोस्त से 8 घंटे उपन्यास सुनाने के बाद पूछा, क्यों दोस्त कैसा लगा उपन्यास मेरा, तुम्हारी कुछ प्रतिक्रिया? तो उनका दोस्त बोलता है, भाई मेरे पास तो तुम्हारे उपन्यास के बारे में शब्द है नहीं, लेकिन एक बात है, सुबह सुबह तुम्हारे इलाके में एक आवाज आएगी, वो जो है आवाज इतनी बढ़िया होगी, वो जो आवाज लगाने वाला है वो होगा होगा सबसे इसका सबसे अच्छा पारखी, समझ जाना बस उस आवाज को। अरे साहब, कलम घसीट बड़े ग्लैड, बहुत खुश, वो पूरी रात जागी, सुबह का 7 बज गया, 8 बज गया, वो पारखी के इंतजार में कि वो पारखी कौन होगा जो उनके उपन्यास को सराहेगा। अचानक सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक आवाज आती है, रद्दी वाला 4 रुपए किलो, रद्दी वाला 4 रुपए किलो, रद्दी बेचो, रद्दी बेचो। गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
2: अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया चीज एक ये है कि आजकल ग्रीटिंग कार्ड बहुत फैशन में है, और ग्रीटिंग कार्ड की एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ जिसमें शहर जबलपुर से मैंने इसको लिया है। ये देखिए साहब कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर कैसे मेल खाता है और उसमें से क्या नई ताशीर पैदा होती है वो देखिएगा। दो लड़कियां आपस में बेडरूम में बैठी हैं, दोनों सहेलियां हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। पहली ने दूसरी से कहा,
3: ए अपन को सदर चलना है। क्यों सदर, का के लिए? ए अपन सदर में क्या ग्रीटिंग मिलती है, यू नो हर ओकेजन की ग्रीटिंग। तो घर में जैसे वो है अपन को थैंक्स है, वैलेंटाइन है, न्यू ईयर है, मेंशन नॉट है, इस तरह मतलब हर ओकेजन की ग्रीटिंग। अच्छा हाँ सच्ची में, तो फिर अपन चलेंगे 12th को चलेंगे।

0: अपन 12 को चलेंगे, जो 14 को जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये बात चल ही रही थी कि घर में जो झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई है उसने सुना, और जैसे ही उसने सुना कि हर ओकेजन की ग्रीटिंग मिलती है और ओकेजन शब्द की मीनिंग उसको नहीं मालूम थी, उसने पूछा,
1: बेटा जी ओकेजन क्या होता है? इसको क्या समझा यार ओकेजन, तुम ऐसा समझ लो भाई कि मतलब ओकेजन मतलब त्योहार, जैसे दिवाली है, दशहरा है, नया साल है, इसका मतलब ओकेजन। अच्छा, ओकेजन मतलब त्योहार।
0: अब साहब उसने एक और काम वाली बाई को तय किया, और दोनों काम वाली बाई जो हैं आपस में बातचीत करके मालकिन से एडवांस ले लिए, और दोनों ने ग्रीटिंग लेने की विचार किया, और शायद हनुमान तालिया उस तरफ से कहीं से चली होंगी, एक अंदाज है मेरा, और वहाँ से रिक्शा उन्होंने किया, रिक्शा करने का ढंग, और फिर उसके बाद में वहाँ से जब वो चली तो रास्ते में शास्त्री ब्रिज जाता है जिसमें चढ़ैया है, और उसके बाद फिर सदर, शिवाजी मैदान, वहाँ फिर ग्रीटिंग कार्ड की दुकान, बाजू में कॉफ़ी हाउस, ये सिचुएशन है। देखिए साहब मामला कैसे हुआ, उसने रिक्शा तय किया पहली काम वाली बाई ने दूसरी काम वाली बाई के साथ, रिक्शे चले आ रहे हैं और रिक्शे वालों का अपना एक स्टाइल होता है, और देखिए कैसे चले आ रहे हैं। पहला रिक्शे वाला
2: रिक्शा रोकियो भैया जरा, तो रोकियो।
0: हाँ बहन जी कहाँ जाने हैं?
2: सदर चलने। कितने पैसे ले हो?
0: 40 रुपये।
2: 40 ले हैं यार, ये ऐसी लूटा मारी मचा रहे तो मतलब 5-5 में गए चार। चलो दूसरा, तीसरा, चौथा, कई रिक्शे वाले चले गए, मामला कहीं तय नहीं हो रहा था। दूसरी वाली ने कहा,
1: ऐसे रिक्शा नहीं तय होता, रिक्शा तय करना बहुत बड़ी टेक्निक का काम है, हमसे समझ लो सीख लो, बहुत काम आएगा, और जितनी हमारी मतलब बहनें श्रोता हैं जो इस सुन रही हैं इस समय ये कार्यक्रम, वो भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि रिक्शा करना सबसे ज़्यादा महिलाओं को पड़ता है, मेल मेंबर तो अपना गाड़ियों से चले जाते हैं, हम लोगों को रिक्शा करने की टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है, खासकर रिक्शे वालों को देख कर, उनकी पहले स्टडी करना चाहिए कैसे हैं कैसे नहीं, फिर कैसे तय करना, ये देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए आने दीजिए कोई रिक्शा, और देखिए साहब कि उतने ही में एक रिक्शे वाला चला आ रहा है, और कम से कम पीजी होगा, पोस्ट ग्रेजुएट, और हो सकता है स्कॉलर हो, वक्त की नज़ाकत है, ये समय की बात है कि आज कैसी कैसी मजबूरियां हैं, बढ़िया वेल अप टू डेट दिख रहा है, किसी हीरो से कम नहीं, और वो साहब चला आ रहा नया झमाझम रिक्शा है, और रिक्शे के साथ साथ वेल अप टू डेट है, कालर खड़ी है, शाहरुख स्टाइल में चला आ रहा है, और चलाते चलाते गाना भी गा रहा है, गाने में कैसी चेंज होगी बाद में वो भी देखिए, चला रहा है किनारे चला, हाँ ये चला दे रहे,
0: रिक्शे वाले को देखा और उसने रिक्शा रोका,
1: एक्सक्यूज मी रुकिए ना,
0: और रिक्शा वाले ने जहाँ ऐसा सुना लर्ने तो था, तुरंत रुक गया, यस आपने कुछ बोला क्या मतलब हमसे?
1: हाँ आपसे ही बोला ना, आप कहाँ जा रहे
0: हैं? नहीं आप बोलिए तो मतलब कहाँ जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मतलब,
1: नहीं हम लोग को थोड़ा सदर तक चलना था, आप अगर चलते तो हम लोग कार्ड खरीदना था।
0: हाँ क्यों नहीं चलेंगे, बैठिए आप, मतलब या सॉरी बैठिए आप,
1: नहीं पहले आप पैसे बता देते, क्योंकि फिर बाद में ना ज़्यादा पैसे बताते हो थोड़ा सा हम लोग की इकोनॉमिकल थोड़ा,
0: अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप पैसे दे ना, कहाँ ऐसी सवारी मिलती है, बैठो तो आप वाला बैठो। अब साहब जैसे तैसे उन लोग बैठे,
2: अब साहब बातचीत चलती जा रही है, और बातचीत चलती जा रही है, कैसे रिक्शा तय हुआ और क्या बात चल रही है वो देखिए, गाने में चेंज भी आएगी वो देखिए,
1: आपकी शादी
0: नहीं चर्चा चल रही है, कई जगह चर्चा आई, कटंगा से भी 2-3 चर्चा है।
2: अब साहब उसने भी पूछा रिक्शे वाले ने, और आपकी हो गई?
1: नहीं डैडी देख रहे हैं मतलब मेरे ब्यूरो में कंसल्ट कर रहे हैं, और
2: पेपर में भी दिया है मतलब ऐसी कोई बात नहीं है,
1: तो मेरी भी तो नहीं हुई मतलब ऐसी कोई बात नहीं, मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ और कोई ऐसा कोई है नहीं, आप देखिएगा मतलब, और ऐसी कोई बात
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ध्यान लगेंगे, और गाना चेंज, घर आइए कभी आओ, चाय वगैरह पिलाइए भैया,
2: ये चला जा रहा है, और गाने की स्पीड में तब फर्क आ गया जब गाड़ी शास्त्री ब्रिज पर चढ़ना शुरू हुई। नेचुरली जब चढ़ाई पर चढ़ती है गाड़ी, हाथ गाड़ी है कोई पेट्रोल गाड़ी तो है नहीं, तो गाने की स्पीड में जो फर्क आता है और उसके जो एक्सप्रेशन में फर्क आता है वो देखिए, और कब खुददारी जागती है वो भी देखिए। गाना गाते हुए चला जा रहा है,
0: उतर जाए क्या? नहीं उतरने की बात नहीं। मतलब उतरने की बात तो हो नहीं सकती। अब साहब ये हुआ कि उन लोग पहुंचे और शिवाजी ग्राउंड के करीब पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो महिला ने कहा रिक्शे वाले से,
1: हमने सुना है बाजू में कॉफी हाउस और बहुत अच्छे डोसे मिलते।
0: हाँ मिलते ना, मतलब हमने खाए एक दो बार, वाला ज्यादा तो नहीं है ऐसे वाला। और क्या कभी कोई अच्छी सवारी लग जाती तो कहने लगते बड़े बंदा प्यार से कि अब आप भी खा ले, बड़ी मेहनत करे तो ज्यादा आग्रह करते तो बंदा अपन भी खा लेते, अच्छा बना दे, बहुत बढ़िया, मतलब मेवा वेवा डाल के बहुत फर्स्ट क्लास।
1: तो आप ऐसा करिए कि ये 100 रुपये ले लीजिए, 3 डोसे 3 कॉफी।
0: आप शर्मिंदा कर रही हैं वाला। इतने भी गाय गुजर नहीं कि वो आपसे पैसा लेंगे हम डोसे वाला, रखो तो
1: नहीं प्लीज आप
0: रखो तो वाला, ऐसा नहीं है।
2: अब साहब फौरन वो कॉफी हाउस गया, 3 डोसे 3 कॉफी उसने ली, लाया रिक्शे में बैठ के उन्होंने खाया। और बाकायदा खाते जा रहे हैं और बात भी चलती जा रही है, बहुत बढ़िया बना था।
1: हाँ खूब अच्छा टेस्ट, थोड़ी चटनी और ले आते तो बहुत अच्छा रहता।
0: अभी ला देना, मंगवा लेते हैं यहीं पे, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: अब साहब कॉफ़ी डोसे फिनिश हुए, उसके बाद महिला ने बहुत ही अफसोस जाहिर करते हुए रिक्शे वाले से कहा,
1: अब आप चले जाएंगे मतलब फिर लौटने में बहुत प्रॉब्लम होगी।
0: अभी कैसे चले जाएंगे, लौट के घर भी तो देखना है। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब गाड़ी आगे बढ़ेगी मतलब।
2: हाँ फिर कोई बात नहीं। अब साहब रिक्शे वाला अपना किनारे रिक्शा लगा लिया उसने, और ये महिलाएं उस कार्ड गैलरी के बाहर खड़ी, अंदर नहीं जा रही। एक ने दूसरी से कहा,
1: चलो ना अंदर चल के ग्रीटिंग ले। कहिया हाँ कांच को दरवाजा है, लकड़ी प्लास्टिक को नहीं है, कहूँ टूट गया, एक गिलास टूट जाए तो मालकिन 5 के 25 वसूल करो, तो समझ जाओ तुम। और जे टूट गया तो 10-20 हज़ार कलेजा में चोट चढ़े, 4-6 साल की कमाई चली जाए, ठहर जाओ। कहीं कहे कोई मोड़ियों को आन दो, कोई खो आन दो, जंदर किया से जाते अपन देखे। एक मोड़ी आई और आके जैसे उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने कहा, हाँ ऐसे खुलता दरवाजा, ढकेलना पड़ता, और ढकेले दोनों ने ढकेला और अंदर। अब शॉपकीपर से बोली, भैया एक्यूज मी।
2: तो शॉपकीपर फॉरन बोला, व्हाट कैन आई डू फॉर यू।
1: फिर वही अंग्रेजी, भाई हम अंग्रेजी से बड़े परेशान हैं, अंग्रेजी इतनी खराब है, हमें बिल्कुल नहीं पोसाती अंग्रेजी। नहीं तो थोड़ी पढ़े करे, कोचिंग वोचिंग पढ़ लो तुम तो, काय को अपने यहाँ किताबें आ रही हैं आजकल, हम तो खूब अंग्रेजी। अरे का अंग्रेजी तुम, हाँ सबसे गुड रूम को बेडरूम की है तो अंग्रेजी बताओ। नहीं मतलब सबसे गुड रूम को बेडरूम, हमें नहीं पोसानी, बेकार अंग्रेजी जा, हाँ हमें नहीं पोसानी। अब एक दिन भाई का भाव कि हम चले जा रहे थे तो उनने कही कि हमारे लड़का को छींक आ गई, हम जा रहे गोटे गांव तक, तो लड़का हमारो जैसे छींको तो भाई ने कही, का कही, आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। हमने कही कोल्ड ओल्ड नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम गोटे गांव। हाँ मतलब अंग्रेजी मतलब ऐसा ना बड़ी माने छीछा लेदर अंग्रेजी में, समझ में नहीं आया अंग्रेजी मतलब। टाकीज को देखो, स्पेलिंग देखी टाकीज की, TALKI, पता नहीं टालकीज की है, कहा हमको तो लगा टाल कह रहा है, का कह रहा है, लकड़ी को टाल, माने बेजा बेकार अंग्रेजी। खैर साहब अंग्रेजी की बात चली, शॉपकीपर से उन्होंने कहा, बे हमने सुनी कि आप कहाँ हर ओकेजन की ग्रीटिंग मिलती।
2: यस हर ओकेजन की मिलती है, आपको कौन सी चाहिए,
1: देख लें थोड़ी।
2: बेटा जाओ बेटा दिखाओ उनको ग्रीटिंग दिखाओ। देखिए मैडम यहाँ से लगी हैं, ये लाइन से ग्रीटिंग लगी हैं, सारी ओकेजन्स की ग्रीटिंग लगी हैं, फेस्टिवल की, बर्थडे की, वैलेंटाइन की, सिस्टर की, ब्रदर की, थैंक्स की, यहाँ रिटायरमेंट की, ये ना सारी ग्रीटिंग, सॉरी वगैरह की ग्रीटिंग इस तरफ लगी, सारी ग्रीटिंग लगी हैं, आप देख लीजिए।
1: अब दोनों सहेलियाँ ग्रीटिंग देख रही, जवाली ने जवाली ने वापस चलो कहीं कहा, भैया हम लोग जा रहे हैं। क्यों क्या हो गया मैडम, ऐसी खराब ग्रीटिंग लगाई, जब तो हम कहें कि मोड़ियाँ बिगाड़ कर आ रहे हैं। भाई और ऐसी ग्रीटिंग पान वाले लाल लाल, उसमें से तीर कमान चल रहे हैं। हमने कहा देखो जब यह सब पूरा लफड़ा हो रहा हो या ग्रीटिंग के कारण यह हो रहा हो, एक ग्रीटिंग हमने देखी कि ग्रीटिंग में 6-7 ठैया ऐसे छोटे छोटे गोरे गोरे ऐसे गोल गोला खाएंगा, ऐसे लड़का बच्चे ऐसे बैठे छोटे छोटे पुंतरिया पहने, ऐसे गजब दिख रहा है। मैंने कही जवाली ले ले का, कहने लगे ले तो ले हो, लेकिन ऐसे लड़का बच्चा कितने साल, 6-8 साल को काम रहन दो तुम तो।
2: कहने लगे फिर साहब, फिर उन्हें ग्रीटिंग व्रीटिंग दे, नहीं हाँ भाई यहाँ मैं समझ में नहीं आ रही, हम आयो की जन ग्रीटिंग।
0: मैडम आपको किस ओकेजन की ग्रीटिंग चाहिए, हमारी कंपनी तो सारे ओकेजन की ग्रीटिंग बनाती है, मतलब ऐसा कोई ओकेजन नहीं है जिसके लिए हमारी कंपनी ग्रीटिंग नहीं बनाती हो।
2: अरे काहे की ओकेजन, हमारे काम की है ही नहीं है।
0: क्यों आपको कौन सी ग्रीटिंग चाहिए?
2: वो वाली है।
0: कौन सी?
2: हर छठ की है। नहीं बोले वो, हर छठ की तो नहीं, तो तीजा की? नहीं तीजा की नहीं। अच्छा वो संतान साथ हैं, महालक्ष्मी? अरे दिव्य तो है नहीं। अच्छा वो वाली ग्रीटिंग है कौन सी? खूब चल रहा हुआ आजकल त्योहार, और अगर मैया परमेश्वरी की पूजा कर ले सो ऐसी प्रसन्न हो जात, खूब धन धान घर में सुख वैभव समृद्धि, मतलब ऐसी झमा झम हो जात, मैया कृपा हो जाए। वाली है
0: कौन सी?
2: वैभव लक्ष्मी की है। नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो नहीं। अच्छा माने सुख की नहीं है ग्रीटिंग?
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब और है, और कौन चाहिए?
2: अच्छा वो वाली है दुख की।
0: दुख की कौन सी?
2: मैं हमारे मतलब ससुर को लड़का मतलब देहांत हो गया, तेरा ही की है।
0: नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो नहीं है, तो ऐसी तो नहीं। अच्छा खारी वाली? नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो कंपनी ने नहीं बनाई।
2: जी तो हम और ओकेजन है। अच्छा एक ओकेजन हम लोग महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंट है, वो वाली हु है?
0: बोलिए मैडम कोशिश करेंगे, वैसे आपकी जो चॉइस है वो अलग हटके है, आप बताइए कौन सी।
2: मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर, मतलब समझ लो जितनी हमारी महिलाएं हैं, शादी ब्याह हो जाए ओके बाद, मान लो लड़का बच्चा नहीं हो रहे तो, और कोई मतलब तबीयत खराब है तो, मतलब भगवती की ऐसी महिमा आपने बदना बदी कि हमारा जो काम हो जाओ, काम पक्को हुए 100% हुए काम। वो ग्रीटिंग ऐसी काम की है?
0: कौन सी ग्रीटिंग?
2: सुहागलों की ग्रीटिंग है। नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो नहीं है। कहा जी तो हम और क्यों किए जान, तुम्हारे पास ये ही ग्रीटिंग नहीं है? वो वाली है
0: कौन सी बहन जी?
2: वो फलेरा की है। नहीं ग्रीटिंग है ही नहीं है तुम्हारे पास, क्या धार ओकेजन की ग्रीटिंग है? तो हमें तो नहीं जान रही, तुम देख लो। तो बाजी वाली देख जा वाली, नहीं नहीं हमें भी नहीं समझ में आ रही, जब इनको नहीं मिली हमें कहाँ मिले।
0: हाँ बोलिए हो सकता है आपकी मिल जाए ग्रीटिंग, आपको कौन सी चाहिए?
2: नहीं मिलेगी नहीं, मुश्किल लग रहा है। वैसे देख लीजिए आप, वो वाली है क्या?
0: कौन सी?
2: करवा चौथ की है।
0: नहीं मैडम आई एम वेरी सॉरी, हार्डली सॉरी, लेकिन ये सारी ग्रीटिंग्स नहीं है, मैं कंपनी को रिकमेंड करूंगा।
2: नहीं अगर करवा चौथ की होती ना,
0: हाँ तो मैडम
2: छह ठैया ले लेते।
0: मैडम वैसे है तो नहीं, लेकिन अगर होती तो आप छह ले लेती हैं, वो तो एक सफिशियंट एक पर्याप्त है।
2: कौन के लाने? उनके लाने।
0: हाँ हाँ
2: अरे उन्हें कहा ग्रीटिंग देना।
0: क्यों क्यों क्यों भाई?
2: अरे वे तो ड्यूटी से आए, डब्बा धरो अपने गए तो खाए पिए अपने टन पड़े। उन्हें कहा ग्रीटिंग, फिर छह का करेंगी आप? फिर नहीं छह को या सो है, चार ठैया मायके में दो सामने बहुत।
0: अच्छा जी बताओ कि आपकी दुकान में और का दूसरी चीजें ले लो, कोई ग्रीटिंग के पीछे पड़ी तो मामा आई होती दूर, कछु तो ले लो।
2: हाँ देख लो कछु कछु। जी भैया जी मग्घा धरे कप?
0: हाँ बहन जी ये कप हैं चाय पीने के, चाय पी लीजिए, इसमें कॉफी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लीजिए, ये बहुत बढ़िया कप है।
2: नहीं तो जी वो वाले कप नहीं है।
0: कौन सा कप?
2: वो वर्ल्ड कप नहीं है?
0: नहीं बोले वर्ल्ड कप तो हम लोग नहीं बेच,
2: नहीं मतलब हम आई मतलब मालकिन कह रही थी कि हम आए हुए गए हैं वर्ल्ड कप में, तो अब ये तो का मालूम लाए नहीं लाए, अपन दो चार खरीद ले चले। अच्छा एक बात बताओ जी, हम तो पढ़े लिखे, तुम देखो जी अंग्रेजी में कपों में कछु कछु लिखो। अच्छा भैया जी कप को साइज कछु बड़ो नहीं?
0: नहीं देखिए ये बच्चों के भी कप, बच्चों के वो बहुत छोटे छोटे से, ये बड़े कप है, इनमें लिखा है मतलब हार्ट और मतलब आई लव यू लिखा है, किसी में फ्रेंड लिखा है, सिस्टर लिखा है, ये सबके लिए अलग अलग है कप क्या? हाँ ये सबके लिए अलग अलग कप हैं, जैसे जिसका बर्थडे है उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, और मतलब अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग कप हैं।
2: अच्छा अच्छा मतलब हर ओकेजन के लिए आजकल कप भी आ गए। अच्छा वो वाला कप नहीं है?
0: कौन सा कप?
2: जब मतलब हार के आएंगे तो उसी में चाय देंगे।
0: नहीं ऐसा तो कप नहीं है।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की तीसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुवियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में सम्मिलित होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। राज्य सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। रुचिवर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1 बजे है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति, नारी का सम्मान देश का अभिमान, शिक्षित नारी उन्नत समाज की पहचान। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। बहनों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि नारी शक्ति देश की प्रगति, तो नारी शक्ति निश्चय ही वह शक्ति है जिससे हमारा घर ही नहीं, हमारा देश, समाज, राष्ट्र प्रगतिवान है। और आज की नारी ही नहीं, इतिहास के पन्ने पलटिए, आपको पता लगेगा नारी ने इस देश की आन बान और शान के लिए अपना कितना लहू बहाया है और संघर्ष किया है। भारत की नारी अबला नहीं, शक्ति है, अखंड भारत की। हमारी सरकार नारी की शक्ति एवं महत्ता को जानती है, इसीलिए नारी के हित में अनेकों योजनाएं चलाती हैं, जैसे लखपति दीदी, जिसके अंतर्गत स्वसहायता समूह चलाकर महिलाओं में प्रशिक्षण कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और निवेशक दीदी योजना। तो बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं निवेशक दीदी योजना के बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि निवेशक दीदी कैसी योजना है। तो भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को निवेश और वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक करना। यह पहल महिलाओं को बचत, निवेश और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। निवेशक दीदी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सही जानकारी देना होता है। बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय विकल्पों के बारे में समझना, धोखाधड़ी और फर्जी निवेश योजनाओं से बचने के तरीके बताना एवं महिलाओं को अपने पैसे का सही प्रबंध करना सिखाया जाता है। अब आइए जानते हैं निवेशक दीदी क्या करती है। तो निवेशक दीदी गांवों एवं शहरों में जागरूक कार्यक्रम आयोजित करती है, महिलाओं को सुरक्षित निवेश प्रदान करती है। निवेशक दीदी वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल है, जिसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाना है। साथ ही विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी, घोटालों, फर्जी स्कीमों और साइबर फ्रॉड जैसे OTP शेयर ना करना के प्रति सावधान करती है। इस पहल में महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा ही कार्य किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं किसी पुरुष के मुकाबले एक महिला से वित्तीय सवाल पूछने में अधिक सहज महसूस करती हैं। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, तब तक सुनते हैं एक गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो बदलते मौसम में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि बदलते मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। साथ ही बच्चों में भी रखरखाव के लिए हम लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता, जिसमें बात कर रही हैं शिक्षिका श्रीमती माया श्रीवास्तव।
1: माया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माया जी, जैसे कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, जिसमें पानी के परिवर्तन के कारण छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे जल एवं वायु में घुल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर उसका गहरा असर होता है, तो मौसम परिवर्तन होने पर क्या करें, आप जरा हमको बतलाइए।
2: मौसम परिवर्तन होने पर सब जो पानी आता है नल में उसमें भी दूषित रहता है, इसलिए बच्चों को या बड़ों को भी सभी को पानी उबाल करके पीना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जब तक बरसात रहती है तब तक पानी उबाल कर पीए, और बाहर का जो खान पान है वो भी दूषित रहता है, उससे बचाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: घर में ताजा भोजन और हवादार घर में रहना चाहिए। पत्नी बच्चे बाहर का खाते पीते हैं, उससे उन्हें समझाना चाहिए कि बाहर का खाना पीना बंद करें, ताजा भोजन करें।
1: यानी कि आपका कहना है कि बदलते मौसम का बच्चों पर खास असर होता है, शायद उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती
2: है। कम रहती है, बिल्कुल कम हो जाती बच्चों की, और बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। अक्सर बच्चे भीग जाते हैं, भीगने के बाद में भी स्कूल में मान लीजिए बैठे हैं या स्कूल से आते समय ही बच्चे भीग जाते हैं, तो बच्चों को तुरंत उनके कपड़े, गीले कपड़े तो बिल्कुल बच्चे ना पहने। कई बार बच्चे गीले मोजे पहने बैठे रहते हैं तो उनका भी बच्चों के पैर से इंफेक्शन बढ़ता और बीमारियां शुरू हो जाती है। सर्दी खांसी बहुत जल्दी पकड़ती है बच्चों को, इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहता है बच्चों का, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। बरसात में उनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है।
1: माया जी, क्या घर के आसपास की साफ सफाई भी आवश्यक है?
2: बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़े इतनी जल्दी पनपते हैं कि घर का जो अगर आसपास कचरा पड़ा है, गंदगी फैली हुई है, तो उसका दुष्प्रभाव घर के पास ही आती, बदबू आती है, कीड़े मकोड़े आसपास फैलते हैं, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आसपास की सफाई पर ही ध्यान देना चाहिए। कपूर का जला के रखें तो उससे भी मलेरिया मच्छर नहीं आते हैं अंदर।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो बहनों, अभी हमने सुनी यह भेंट वार्ता, जिसमें बात कर रही थी शिक्षिका श्रीमती माया श्रीवास्तव। श्रोताओं, जैसा कि मैंने अभी नारी शक्ति पर बात की थी कि किस तरह नारी हमारे देश के हित में कार्य करती है, अब इसी कड़ी में जानते हैं भारत की पहली महिला वकील, समाज सुधारक और लेखिका, जिनका नाम है कार्नेलिया सोराब जी। इन्होंने उस समय पर इतिहास रचा था जब महिलाओं को कानून की पढ़ाई एवं वकालत के लिए बहुत कम अवसर मिलते थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1866 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे बॉम्बे

विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी। भारत लौटने के बाद उन्होंने अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के लिए कानूनी सहायता दिलाने के लिए वर्षों तक कार्य किया। लगभग 600 से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त कराई, जिनसे उन्होंने कोई भी शुल्क नहीं लिया। 1923 में महिलाओं को भारत में वकालत करने की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से वकालत शुरू की और भारत की पहली महिला अधिवक्ता में अग्रणी रही। कार्नेलिया सोराबजी ने महिलाओं की शिक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के लिए कार्य किया। कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर महिला कल्याण के लिए भी अभियान चलाए। उनका मानना था कि महिलाओं में शिक्षा समाज में स्थायी परिवर्तन की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे कि कार्नेलिया सोराबजी लेखिका भी थी, तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी। कार्नेलिया ने अपने जीवन में संघर्ष, दया, उपकार और परसेवा को चुना, जिससे लोग हमेशा याद रखेंगे पहली महिला वकील को। और 6 जुलाई 1954 को लंदन में उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। कार्नेलिया सोराबजी भारतीय इतिहास की साहसी, शिक्षित और प्रेरणादायक महिला बनी। उन्होंने कठिन सामाजिक परिस्थितियों में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और महिला वकालत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो श्रोताओं, इसी के साथ सुने एक और गीत, जिसे एक बार फिर से आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

तो अभी हमने सुना यह गीत जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। बहनों, जैसा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। तो क्या करें कि इस मौसम में भी हमारी त्वचा दमकती रहे, इसके लिए जानते हैं कुछ उपाय। पहला है, हल्के फेस वॉश से दिन में 2 बार सुबह और शाम को चेहरा धोएं, ताकि चेहरे का तैलीयपन और धूल हट जाए। त्वचा को मॉइस्चराइज करें, इस मौसम में भी नमी की आवश्यकता होती है, तो ऑयली मॉइस्चराइजर को हटाकर साधारण मॉइस्चराइजर को यूज करें। जब भी घर से बाहर निकले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, बल्कि बादल होने पर भी यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए बरसात में भी बादल होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन लगाएं। त्वचा को सूखा लें, यानी अगर बारिश में भीग गए हों तो घर पहुंचकर शरीर को, चेहरे को अच्छी तरह से सुखाएं। साथ ही भारी मेकअप ना करें, हल्के एवं वाटरप्रूफ उत्पादों का इस्तेमाल करें जिनसे रोम छिद्र बंद नहीं होंगे। जरूरी और सबसे जरूरी है, जो हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए आवश्यक है, वो है भरपूर नींद और पर्याप्त पानी। जी हाँ, यह दोनों हमारी त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं। तो श्रोताओं, चलते चलते सुनते हैं एक और गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी, गठिया रोग विशेषज्ञ एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन व समय एक बार पुनः सुन लें, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पद्मधर झा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लोक भजन पद्मधर झा के स्वर में।

पद्मधर झा के स्वर में अभी आपने सुना दादरा। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए अब सुनिए झूला गीत पद्मधर झा के स्वर में।

झूला गीत अभी आपने सुना पद्मधर झा के स्वर में। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रविंद्र कुमार मिश्रा की गाई गजलें।

0: रविंद्र कुमार मिश्रा की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। जावेद अली की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म नकाब का गीत। बोल समीर के हैं और संगीत है प्रीतम का।

इशकजादे। इस फिल्म का गीत सुनिए जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और इसे संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2100

0: 25 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग ने रतलाम उज्जैन झाबुआ धार अलीराजपुर खरगोन बुरहानपुर छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर देवास सीहोर हरदा नर्मदापुरम बैतूल नरसिंहपुर और पाडुना जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। झाबुआ में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनप्रतिनिधि से सीधे संवाद को सशक्त बनाने में आज सांसद गणेश सिंह ने सांसद सुविधा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

0: किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पाद

0: की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके मनपसंद गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में हमें पत्र लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। साथ ही ग्राम संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सिलसिला का गीत, जिसे आवाज़ें दी है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सिलसिला का ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

संतोष आनंद का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत, जिसे आवाजें दी है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इसे सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत।

इस समय आप आनंद ले रहे हैं अपने मनपसंद गीतों का और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, राजा जी कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन उमेश, सरोज आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म लिबास का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत गुलजार का है और संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत फिल्म इजाजत से, आवाज़ आशा भोसले की है, गीत गुलजार का, संगीत आरडी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झागवेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की मुख्य धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर है। श्री कुमार आज

इंदौर में आयोजित सम्मेलन में 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद जी को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में, पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसकी 8वीं कड़ी आप सुनेंगे रात 8:15 पर। साहित्य भारती ये आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजकर रामबाबू
1: मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काळेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायलका और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।

हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला।

अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गुलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गुलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: इसने तो स्कीट के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देखिए।
4: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
5: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
5: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
6: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
5: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
5: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय? उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी, पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: ओ, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक

0: फूल नहीं आए, उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें देती हूँ।
1: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
0: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
2: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तुमने देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
3: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंतृत हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या? ओह, ये प्रेम की पीड़ा। हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रूप। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
2: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
3: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा?
2: चलिए झूला गृह की ओर।
3: झूला गृह की ओर?
2: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
3: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
2: कैसी अचरज की बात है कि...
3: क्या हुआ?
2: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
3: क्या क्या मालिका आ रही है?
2: और क्या,
3: तो सब जो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही यह जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
2: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
3: ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
2: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
3: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे, मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
2: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
3: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
1: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। मुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है?
3: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा।

0: हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
0: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
1: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
1: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी, हृदय ये सम्मान पाकर व्यर्थ फूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
1: हाँ
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये सात श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
1: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
1: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
0: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
1: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है।
0: लाओ अपना दूसरा पैर दो।
1: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
0: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
1: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
0: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
1: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
0: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
1: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
0: हाँ क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
1: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
0: सच?
1: बैसखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रही हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावलिका, वाह मित्र। बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
0: आई गौतम, महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावलिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
0: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्रे, तुम्हारा ये किसलय कोमल बाया चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्रे, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
5: मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
2: है। बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडी कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, थी कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखना?
3: नहीं, मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है ना। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुने दिया।
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: वो कौन सा गाना था?
0: रंगली नी चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए लेकिन मैंने सीखा बहुत, और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले लिख लेना कोई बात नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा। तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता तो तेरा ठीक है, लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास, बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंद्र जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात
0: रविंद्र
1: है
0: जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते।
1: जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे।
1: हाँ
0: मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: भूख
0: हैं, भूखे प्यास लगी
1: लगी
0: होगी, और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना
1: बहुत
0: खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। वो मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों? तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: तो
1: जी,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी।

0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजू
0: पहली
1: शाह ने।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गज़ल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना, दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है,
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ।
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: ये
0: जी
1: गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें, ना जानने को
0: जी।
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बम्बई छोड़नी पड़ेगी। और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूँगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है,
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे। जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोले
1: बिल्कुल।
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल,
0: के कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब।
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल
0: मिलता
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: ये
1: मैं
0: तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को
1: हाँ,
0: क्रिएट कर रहे
1: लेकिन
0: हैं।
1: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंद्र जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
1: मैं
0: जाऊंगा,
1: आ
0: वक्त
1: जाऊँगा, तब
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब वो
0: सोनू निगम
1: गाना,
0: जी के पिताजी।
1: जी वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
0: मिला।
1: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी बात
1: नहीं
0: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक
1: है। जी
0: केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं हैं और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं
0: आपने,
1: नहीं नहीं
0: और
1: नहीं नहीं
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं। ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज़ पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों
1: नहीं
0: को?
1: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो। तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। हमने कहा
0: अच्छा
1: फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा।
0: अच्छा
1: तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
0: हाँ
1: तो अभी मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज़ नहीं है, मैं सक पका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा, तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
0: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: लिखवा देते।
0: सिचुएशन बतानी पड़ती है ये एक्टर
1: हाँ जो
0: है
1: भी
0: एक्ट्रेस,
1: सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत।
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
0: हर रिकॉर्डिंग में आप
1: हर
0: रहते
1: रिकॉर्डिंग में
0: हैं।
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
0: नहीं।
1: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे

0: कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5,000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं, और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी
1: है, लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं, वीना कैसेट कंपनी हमारे
0: जी
1: केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया

0: भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
1: जी
0: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
1: उड़ली।
0: ओडली
1: अच्छा, यहां पर भी
0: म्यूजिक,
1: चुनरी आई।
0: चुनरिया अंडरस्टूड
1: हाँ जी।
0: है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
1: अरे वाह।
0: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
1: अच्छा,
0: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है, और राजस्थान

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित सम्मेलन में 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। इंदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि BLO चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि चुनाव कर्मियों ने मिलकर इतना अच्छा SIR का काम किया है। प्रदेश के इंदौर शहर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PME बस सेवा के अंतर्गत आज से रूट नंबर I-14 पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रायल प्रारंभ हुआ। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दमनकारी वन कानूनों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी के कारण स्थानीय लोग उन्हें मन्यम वीरूड यानी जंगल का नायक भी कहते थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के पंडरंगी गाँव में हुआ था। उनके पिता एक फोटोग्राफर थे। छोटी उम्र में ही पिता के निधन के बाद उनका झुकाव सन्यास की ओर हो गया। 18 वर्ष की आयु में वो सन्यासी बन गए। सीताराम राजू जी ज्योतिष, आयुर्वेद और घुड़सवारी में भी निपुण थे। आदिवासियों के बीच उनके इस ज्ञान और रहस्यमयी व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1882 में लागू किए गए मद्रास वन अधिनियम ने स्थानीय आदिवासियों के जंगलों में जाने और पारंपरिक रूप से खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सीताराम राजू ने

आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, जिसे रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अंततः 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें जंगल में पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध कर गोली मार दी। उस समय उनकी उम्र महज 26-27 वर्ष थी। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू जी ने कभी भी आदिवासियों के हितों के साथ समझौता नहीं किया और अंतिम सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। अल्लूरी सीताराम राजू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के युवाओं को भी त्याग की भावना और देश के प्रति प्रतिबद्धता सीखनी चाहिए। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत कर्मा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय ने युवा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, युवा सहकार योजना। युवा सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों को नए विचारों के साथ सहकारी समितियां बनाने और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये योजना उन सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करती है जो कम से कम 3 महीने से सक्रिय रूप से काम कर रही हों। परियोजना की कुल लागत का 80% तक वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इसके तहत पात्र श्रेणियों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग, इन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाती है। NCDC द्वारा सामान्य ऋण दर पर 2% तक की ब्याज छूट भी दी जाती है। दोस्तों, ये योजना NCDC द्वारा अनुमोदित सहकारी स्टार्टअप और नवाचार कोष से जुड़ी है, जिसका कोष आकार 1,000 करोड़ रुपए है। ये युवा सहकार योजना उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो खुद का व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत मन फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: दोस्तों, सुंदर और आकर्षक दिखने की चाहत तो हर किसी की होती है। इसके लिए हम तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कभी कभी हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन बिना मेकअप के भी हम अपनी त्वचा को चमकदार बना सकते हैं। तो चलिए युवा श्रोता दिव्या से जानते हैं कुछ स्किन केयर टिप्स।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या शुक्ला जिला सिंगरौली से, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और आज मैं आपको बिना मेकअप के भी चेहरे को चमकदार बनाने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। इसके लिए सबसे जरूरी है क्लींजिंग टोनिंग, इसके साथ ही भरपूर नींद ले, पर्याप्त पानी पिए और विटामिन सी युक्त आहार ले। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। डाइट में हरी सब्जियां, ताजे फल, विशेषकर खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू शामिल करें। डेली सुबह और शाम को सोने से पहले चेहरे को फेस वॉश से साफ करें। इसके बाद गुलाब जल का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएं। हफ्ते में एक बार स्क्रब करें, एलोवेरा जेल से मसाज करें या बेसन, हल्दी, दही जैसे पैक को भी लगा सकते हैं। इससे डेड स्किन निकल जाती है और चेहरा खिल जाता है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। आप अपनी स्किन केयर करके भी अपने चेहरे को बिना मेकअप के भी चमकदार और ग्लोइंग बना सकते हैं। धन्यवाद
0: दोस्तों। अब सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, धर्मात्मा फिल्म से।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार समाचार की ओर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीशियन पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कुल पद हैं 6,557। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 30 वर्ष, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 33 वर्ष। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026, आखिरी तिथि है 29 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवारों के पास बी या बीटेक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तकनीशियन ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या पीसीएम विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली भर्ती परीक्षा है बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के लिए, 779 पदों के लिए है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 30 जून 2026, आखिरी तिथि 20 जुलाई 2026। आवेदन करने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और अधिकतम आयु है 45 वर्ष। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी स्ट्रीम में स्नातक। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत अनपढ़ फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे महबूब इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, धुन नौशाद की है।

मेरे महबूब। इस फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद का था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक नगमा। धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, फिल्म का नाम अजनबी।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं इश्क पर जोर नहीं, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी की शब्द रचना, एसडी बर्मन का संगीत।

इश्क पर जोर नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी SD बर्मन ने। और फिल्म संगीत का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम दयावान, गीतकार अजीज कैसी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म संगीत के आखिर में अभी आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 10 बजे, आज रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती स्पॉटलाइट आज रात 9:15 पर। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम आज शाम 7:21 पर गम्मत पर आधारित होगा। सुर्खियों में आज रात 8 हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। सुगम संगीत में आज शाम 6:45 पर कलाकार होंगे अनवर हुसैन। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 6 बजकर

आइए अब आपको बताते हैं कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी कल की पहली सभा आरंभ होगी रोजी की तरह कल सुबह 5:55 पर, वंदना कल सुबह 6:05 पर। प्रकाश कर्ण के अंतर्गत कल सुबह 6:30 पर अश्वघोष कृत सौंदरानंद महाकाव्य से बुद्ध का उपदेश सुनिए, स्वर दामोदर शास्त्री का। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 7:30 से और रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। इस रनिंग कमेंट्री को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

सिंधियत जी सुरहाण, कल सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी, कल सुबह 10:00। मुस्कान, बच्चों का कार्यक्रम कल दिन में 2:30 पर। इन सभी कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग जबलपुर में कल सुबह 7:20 पर सुनिए श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना विषय पर विषय विशेषज्ञ श्री अंकुर, उप कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश से की गई बातचीत।

कल लोग रजहार में सुबह 9 बजे द्वारका प्रसाद शर्मा के गाये बुंदेली लोकगीत आप सुन सकेंगे। तबला संगति सुरेश कुमार पाठक की होगी। विश्व दर्पण कल सुबह 10:10 पर। वंदे मातरम गौरवगान की 1.5 सदी कल सुबह सुनिए 10:05 पर। सारंगा में आपके फरमाइशी नगमे कल 10:20 से सुने जा सकेंगे। कल शाम 6:10 पर देशभक्ति फिल्मी गीत सुनिए। लोक संगीत में कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे देवी सिंह दहिया के गाये बुंदेली लोकगीत। इसे दोबारा सुने। लोक संगीत में कल शाम 6:30 पर सुनिए देवी सिंह दहिया के गाये बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत में कल शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भजन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और शाम 6:05 से अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

0: अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं देशभक्ति फिल्मी गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म का गीत सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाज में, समीर की शब्द रचना, ए आर रहमान का संगीत।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। देशभक्ति फिल्मी गीतों के आखिर में सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाज थी, समीर की शब्द रचना, एआर रहमान का संगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रुप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्

0: हरियाण पंजाब राजस्थान प्रांतानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लाख कोटि रुप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 3,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूरक्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 45,000 युवकानां कृते नियुक्तिपत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मुहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संगठनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु 23 आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतम् इमे पाकिस्तानात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीराच्च आतंकवादी गतिविधीन् संचालयन्ति। एते आतंकवादिनः भारतविरोधि कृत्येषु, शस्त्रास्त्र तस्करेषु, निधिसंग्रहादिषु संलग्नाः सन्ति। अस्याः घोषणायाः परं राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन एतेषां वित्तीय स्रोतांसि अवरोद्धुं शक्यन्ते, सम्पत्तिश्च स्वायत्ती कर्तुं शक्यते। अवधेयमिदं यत् 21वीं शताब्द्याधिक 2000 वर्षे UAPA अधिनियमे संशोधनस्य कार्यान्वयनानन्तरं केन्द्रीय सर्वकारेण 80 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किरण श्रीवास्तव के गाए बुंदेली लोकगीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए सुने सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अनवर हुसैन, इनकी गाई चंद गजलें हम आपको सुनवा रहे हैं। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता।

आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं अनवर हुसैन, इनकी गई चंद गजलें हम आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए, रास्ते में मेरे ऐसी रोशनी हो जाएगी, ये ना सोचा था कि ऐसी जिंदगी हो जाएगी।

0: सुगम संगीत के आखिर में आप सुन रहे थे अनवर हुसैन की गई ये गजल। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए

देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इंदौर में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ किया संवाद और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खिलौने के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग $120 अरब है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने की सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज कहा कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि योजना 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में सुविधा प्रदान करेगी। इससे लाखों लोगों की हवाई यात्रा का सपना साकार होने के करीब आएगा और एक उभरते हुए भारत की आकांक्षाओं को जोड़ा जा सकेगा। समाचारों में वक्त है अब एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार ने आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। इंदौर पहुंचने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों BLO ने मिलकर SIR का काम बहुत अच्छा किया है।
2: हम मध्य प्रदेश के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहूंगा कि इस बार जो भी हमारे

0: चुनावी कर्मियों ने सीईओ साहब के नेतृत्व में डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ईआरओज और बीएलओज ने मिलकर इतना बढ़िया एसआईआर का कार्य किया है जिसके ऊपर पूरे देश को नाज है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओमकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री श्री परमार इसके बाद सीधा रीवा इंजीनियर और रीवा आयुर्वेद कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में सम्मिलित हुए। इस मौके पर प्रश्न पत्र चोरी होने के कारण बीटेक चौथे सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित होने पर उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित की गई है, संबंधितों के खिलाफ एफआईआर कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितग्राहकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैतूल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मिलित होंगे। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू निरोधक माह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक मनाया जा रहा है। पन्ना जिले के प्राचीन मंदिरों और निजी संग्रहों से 64,000 से अधिक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां खोजकर ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। नीमच के रेडक्रॉस भवन में 6 जुलाई को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और धार, खंडवा, रायसेन और आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIRF पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। श्रोता सुने किसान भाई और बहनों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: 15 दिन के लाने आप औरों के दिमाग के उलझावे को काम हम कर भी आ गए हैं। मनो भैया अब शुरू होगा वह अषाढ़ को महीना, और अषाढ़ को महीना अपन गांव वालों के लाने केवल बस कार्य को समय नहीं आ, बल्कि उम्मीद उत्साह और मेहनत की शुरुआत आए। कार्य करे उमड़ घुमड़ करत बादल, संगे संगे बैलों के गले की घंटी की घनक और सौंधी सौंधी खेत की मिट्टी की महक, इन्हीं सब में छिपो रहते अपने गांव को अपन औरों को सुकून। मनो भैया पता है जब बस कार्य की पहली दफ़ा की बात है कि पहली दफ़ा की बरसात तो झमाझम भई जा अपन और जाना थे, और तनक पानी गिरवे के पहले हमारे गांव के जोन बिरजू भैया है ना, उनने उठाई साइकिल और साइकिल पे बैठ के कहूँ जावे की तैयारी हती। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने और फिर का भाव कि वे अपने गंतव्य लो नहीं पहुंच पाए और रास्ता में दे झमाझम पानी, दे झमाझम पानी। अब भैया कहे समझ नहीं आओ कि सड़क कितने है और गड्ढा कितने हैं, ऊपर से मिट्टी गिलाओ गोबर कीचड़ सब एक हो रहो थू। संभलवे की बेजा उनने कोशिश करी, मनो का भाव भैया साइकिल समेत छपाक से गिर गए। लगो तो नहीं है मनो उनमें जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा उनने पहन रखे थे तो उनमें जो है कीचड़ गिलाओ की ऐसी कलाकारी भई कि का बताएं। और तब फिर सबरे आज लो मतलब ब कलाकारी आज लो हमें याद आ जात है तो हंसी ठिठोली हमारों के बीच में हो जात जब बात याद करत हैं। सबरे भैया हरे उनके पास आए और फिर कही कि भैया आज बस कार्य में बरखा रानी ने तुम्हारा उमदा स्वागत करूँ है। तब भैया बोले स्वागत के संगे अपन औरों के तेज घामों से हताश परेशान मन में सोई खुशियों की बरसात हो रही है, सबके मन आनंदित सोई हो रहे हैं, तो काय के से अब वर्षा के दिन आ गए हैं।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पता है किसान भैया, आरो बरसात की बूंदों से मन खे जौन ठंडक मिलत है, तो ऐसे ही ठंडे मन के संगे आप औरों खे आज को हटका हम बता देते हैं। आज को अटका को उत्तर 15 दिना लो, इत्मीनान से आप और सोचियो समझियो और फिर पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से लिख भेजियो। तो आज को अटका आप औरों के लाने लेके आए हैं। अटका ऐसो है कि 4 खेत 64 क्यारी 3 मुकद्दम 16 पटवारी। एक बार और हम दोहरा देते हैं आज को अटका। 4 खेत 64 क्यारी 3 मुकद्दम 16 पटवारी। अब एको उत्तर अटका को 15 दिना लो आप सोचियो समझियो और पत्रों के माध्यम से लिख के भेज दइयो। और किसान भैया रो, अब अपने भत्काओं पे आते हैं। तो पता है एक बात आप और रखे बतावो चाह रहे हते कि पिछली दफ़ा हम अपनी छोटी बहन के ते गए गुजरात। जब पहली दफ़ा होता है कि बरसात भई बस कार्यों को समय आओ तो अच्छो झमाझम पानी गिरो। तो पता है भैया रो, उते की सबरी जोन बिन्ना भौजी भैया हरे मोड़ा मोड़ी हरे अपने घरों से बाहर निकल आए। अब हम अचरज में पड़ गए कि पानी झमाझम गिरो और सब कोई घर से बाहर निकल आए पानी में भीगवे के काजी। तो अपने अपने घरों से जब वे बाहर निकल आए तो हमने अपनी छोटी बहन से कही कि जी सब बाहर काहे निकल आए। तो छोटी बहन बोली, हाँ अपन सोई चलत है मोड़े मोड़ियों के संगे और पानी में भीज में चले। हमने कि जो का आए भाई, तो फिर तो सबके संगे बेजा हमने तो उछल कूद करी, मजा आओ बहुत। मोड़ा मोड़िन तो पानी में छप छप करके खूब कूदे, बड़े बूढ़े सब मिलके होते बहुत आनंद कर रहे थे पानी में। मनो फिर बाद में हमने अपनी बहन से कही कि आज तो कौनों के सर्दी ने बैठ जाए। तो छोटी बहन कहने लगी कि देखो तो बिन्ना, इते को जो ऐसे ही रिवाज है। तब हमारी बहन ने बताई कि जब इते होत का है कि पहली दफ़ा पानी गिरत है तो इते सवाई कोई घर से बाहर निकल के बेजा भीन जाते हैं। हमने कि ए में का फ़ायदा होत है। बिन्ना ने बताओ कि जिज्जी पहली दफ़ा भींजवे से अपने शरीर के मन के उम्दा फ़ायदा मिला थे। हमने कही, तनकने लगी कहत में भींज है तो सर्दी जो काम ने हो जे है, अब ये में फ़ायदा कौन सो हो जे है अपने शरीर के। बिन्ना बोली, अरे जीजी, जे लोग कहते हैं कि जब पहली दफ़ा बस कार्य को पानी सिर में पड़ा थे ना, तो अपने दिमाग के कछु रसायन जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं, वे खुशी के वे निकलन लगा थे और ज़्यादा निकला थे। ऐसे में फिर अपनों जन तनाव है और जन चिंता है, घर परिवार तो कितनी मुश्किलों चिंता रहती हैं, वे सब तनक कम हो जाती हैं और अपनों मन खुश हो जाते। इतने ही नहीं जी जी, बस कार्य को पानी प्राकृतिक रूप से छारी सोई होत है, जौन से अपन औरों के बाल और जन चमड़ी है ना उसकी परेशानी या जौन भी दिक्कतें आती हैं चमड़ी में, जैसे कोनों कोनों के चेहरे पर

मुहासे हो जाते हैं और गर्मी में घमोरियाँ सोई आ जाती हैं या चमड़ी में लाल लाल चकत्ते से सोई आ जाते हैं। तो ये सब जो हैं ठंडे बस्कारे के पानी में भींजवे से इनमें आराम लगत है। हमने कही ठीक है बिन्ना, मनो अपन औरों है तो कोनो परेशानी नहीं है, पर आनंद पानी में भींजवे से बहुत आत है और अषाढ़ के बदरा गरजत हैं बरसत हैं तो अपन औरों के मन सोई खुशी खुशी से झूमन लगत हैं।

किसान भैया भौजी हरो, अब तनक भीजे भय मन के संगे एक बार फिर से पिछली दफा को अटका सुई ले लेते हैं। तो 15 दिन पहले को अटका हतो जौन मधुवंती बिन्ना ने आप औरों से पूछो हतो। 1 सती 32 पति गुण अवगुण की खान, मन भावे सो करवात है घर में रहत छिपान। तो एक उत्तर आप औरों के बता दें। आप औरों ने 15 दिन में दिमाग की बहुत कसरत तो करी हुई है, मनो आप कोनों को उत्तर सही रहो हुआ कोनों को नहीं रहो हुआ। तो एक उत्तर हम बता देते हैं, जीव और दांत, है ना। तो 1 सती 32 पति 32 दांत होते हैं। गुण अवगुण की खान, मन भावे सो करवात है घर में रहत छिपान। तो जो पे 15 दिन पहले को अटका आप रखे हमने बता दो, को उत्तर सो ही बता दो। अब अपनी बतकाओ पे आते हैं तो का बताएं किसान भैया हरो। देखो पिछली दफ़ा जो बसकारी को पानी है ना, उस सूखी धरती पे पड़त है जब, तो भीनी भीनी सौंधी खुशबू जो है व आत है पहली दफ़ा जब पड़त है। और जई सुगंध भैया हरो अपनी मन के तसल्ली देते, सुकून देते, और अपनी खेती किसानी के लाने तो वरुण देवता को आशीर्वाद समझना चाहिए अपन और रखें। किसान भैया रो बसकारी के आय से अपनी फसलों के नवजीवन मिला थे, जा सोचो मनो यही बसकारी में अपनों स्वयं को जीवन के सोई खतरे में नहीं डालने। अब खतरे में नहीं डालने कैसे, तो ऐसे भैया कि इन्हीं दिनों अपन जान थे बसकारी में कितने कीड़ा मकोड़ा पतंगा सांप बिच्छू सब निकला थे। अब होत का है कि बसकारी के शुरू में तनक जब पहली दफ़ा पानी गिरत है तो गर्मी इतनी तेज पड़त है और तपन होत है, तो की तपन से जो है धरती तपत है, और धरती तपत है तो जब पहली दफ़ा पानी पड़त है तो वो की जो तपन है वह गर्मी ख़त्म नहीं होता है। तो जब ख़त्म नहीं होता है और पानी पड़त है पहली दफ़ा तो अंदर और तपन होत है। तो ऐसे कहो तो सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा जमीन के अंदर से बाहर निकलते थे, होते बेल से बाहर निकल के घूमन लगते हैं। तो यही से अपनी भौजी हरों के लाने हम जा कह रहे हैं कि तनक भैया हरों को और अपने मोड़ा मोड़ियों को तनक ध्यान धरियो। ध्यान ऐसे धरने हैं कि जैसे भैया हरों के समझाने हैं कि बसकारी में सकारे खेत चले जाएं और दिन छत घरे आ जाएं, अपने पैरों में जो जूता पहन के खेत जाए करें। ये बातें कहवे में तनक छोटी छोटी सी लगती हैं, तनक तनक सी हैं, मनो इनसे अपने जीवन की सुरक्षा बनी रहे थे। और भैया तुम्हारों को जीवन सुरक्षित रहे तो जीवन की हर बात उम्दा लग है और खुशी दे है। अषाढ़ की हर पहार आपोरों के जीवन में उम्मीद की किरण लेके आते, अपन जानत है। फिर तो मन खुशी से जय कहे थे कि घन बरसत बड़ी भूर भई, घन बरसत बड़ी भूर भई।

किसान भैया रो आवाज को अटका आप औरख है एक बार फिर और बता देते हैं जो नाटका आप औरख लाने लाए हैं तो अटका ध्यान से सुन लियो लिख लियो। अटका है चार खेत 64 क्यारी 3 मुकद्दम 16 पटवारी। चार खेत 64 क्यारी 3 मुकद्दम 16 पटवारी। और ए अटका को जवाब 15 दिनों के भीतर सही उत्तर लिख के चिट्ठियों के माध्यम से आप औरों के भेजने हैं और पता सोई बता दे रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र उपनिदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 14 आकाशवाणी कटंगा जबलपुर 482001। तो पता आप औरों ने लिख लो हुए ऐसी उम्मीद है। अब तनक अपन बतकाव पे आते हैं तो किसान भैया रो बस कार्य के जिस दिन अपन और चल रहे हैं और अपन और एक है जब बस कार्य की बातें होती हैं बस कार्य को जिस दिन चल रहे हैं तो अपने बचपन की सोई कभी कभी याद आ जाते है। और जब अपने गांव के मोड़ा मोड़ियों के देखा थे कि बस कार्य में गड्ढों में पानी में कगजा की नाव बना बना के तैरा थे बरसत पानी में जानबूझ के भींजा थे और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका थे बहुत ही नर्रत हैं मोड़ा मोड़ी हरे हैं आप और तो जानत अपनी भौजी जिज्जी हरे कितनी परेशान रहती हैं बरसात पानी में छपाक छपाक करके उछल कूद कर हैं एक दूसरे के भिगे हैं। और सच्ची में भैया इतनी सब बातें जब सोचा थे ना तो आप औरों के बतात बताते ऐसो लगाते ऐसो लग रहा हो कि बे बचपन के दिना अपने फिर से वापस आ जाते तो कितो अच्छो हो। तो और बरखा रानी जो है ना वे जम के बरस रही हैं तो अपने मन की हुलास के एक बार फिर से अपन और बचपन के दिना में लौट जाते और पूरी कर लेते बस ऐसे ही लगा थे। काय कैसे भैया रो तनक बाहर तो देखो कैसे बरखा रानी जम के बरस रही हैं तनक देखो तो।

अब किसान भैया रो एक छोटी सी बात आप औरों के बता रहे हैं कि देखो जैसे एक लकड़िया होत है ना तो बा अकेली अपन खे आसानी से अपने हाथ से कट जात है, टूट जात है अगर तोड़त हैं तो। मानो जब 10-12 लकड़ियों के इकट्ठे मिला लें और उन्हें बांध लें, एक गट्ठा सो बना लें उनको, और अगर तोड़वे की कोशिश करत है तो का टूटत है? बिल्कुल नहीं टूटे। जा तो आप और भी जाना था तो वो बा बिल्कुल नहीं टूट सके। बस ऐसा ही कहवे को मतलब है कि भैया जब एक अकेले भैया अपने बाजार में मान लो फसल बेचवे जाहें तो उनके उचित दाम नहीं मिल पाए। मानो जब गांव के 10-12 किसान भैया रे अपने इकट्ठे हो जाए, एक संगे मिल जाए हैं और फसलें बेचत हैं तो उनकी ताकत एक संगे मिल के ताकत बढ़ जाते है और मुनाफा जो मिलत है तो वो उम्दा अच्छो मिल जाते। मतलब सबको साथ रहे, सब मिलके एक समूह बना है, एक समिति बना ले हैं तो काम अच्छा हुए। और अगर हर आदमी तनक तनक सो पैसा या कोनो साधनों में मिलात है तो मुझको फ़ायदा होत है। फ़ायदा ऐसो कि जब सहकारिता के संगे काम कर हैं तो अगर कोनो भैया के बीज या फसल के लाने खाद खरीदने हैं तो पैसा की ज़रूरत हुए तो बे भैया हरे अपने संग के समूह भैया के भैयारों से आसानी से कम ब्याज पे पैसा उधार उनसे ले सकत हैं और उनको काम सोई बन जे है। तो कहबे को मतलब हमाओ जो ही है कि सहकारिता के अंतर्गत मुझको फ़ायदा होत है और खेती किसानी के काम में आगे बढ़वे को जो सबसे उम्दा मूल मंत्र होत है। मनो किसान भैया हरो जो तो खेती किसानी में आगे बढ़वे वालों जो मूल मंत्र है वो बता दो हमने। मनो जीवन को जो मूल मंत्र है वो जय कहते हैं कि मन में उत्साह और उमंग अपने जीवन में बनू रहे। और जो बसकारी को समय चल रहा है तो बसकारी के आवे से उमड़ गुमड़ करत बादर और कार्य करे जो बदरा हैं जब बरसत हैं तो आह भैया हरों के मन तो वैसे ही आनंदित हो जाते हैं।

हाँ तो किसान भैया हरो, अब चलवे को समय हो गया, लेकिन इतनो समय तो अबे अपने पास है कि आप औरों के चलत चलत आज को अटका एक बार और हम आपके बता दे रहे हैं। तो आज को अटका आप औरों के लाने लाए हते, वो ऐसो है कि चार खेत 64 क्यारी 3 मुकद्दम 16 पटवारी। चार खेत 64 क्यारी 3 मुकद्दम 16 पटवारी। तो ए अटका को जवाब 15 दिना के भीतर आप औरों के लिख के भेजने हैं। और पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र उपनिदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 14 आकाशवाणी कटंगा जबलपुर 4820001 पिन कोड है। और किसान भैया रो आज की गम्मत जोन जन भैया हरों ने अपने लोकगीतों से सजाई, उनके नाम सोई ले लेते हैं। तो आज शामिल हते हरिलाल बरमैया साथी भैया और रामचरण अहिरवार, राजा राम विश्वकर्मा और साथी भैया, संगे संगे तिलोत्तमा विश्वकर्मा और इंदुबाला मिश्रा जिज्जी हरों ने अपने लोकगीतों से जा गम्मत सजाई। और अब चलवे की बिरिया हो गई है। तो सभी किसान भैया भौजी जिज्जी बिन्ना हरों के सरला बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात के ठीक 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: सबसे पहले तो बात इस पर कि राजस्थान के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए एक नई व्यवस्था की एक नई आधारशिला रखी। आइए सुनते हैं कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न मेगा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
3: चुनाव की चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।
2: अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: पूरे कार्यक्रम को देखें तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम है या फिर एक विकसित भारत 2047 की जो रूपरेखा लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
4: बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कोई भी योजना हाथ में लेते हैं और

0: उनका वो वहां पर केवल नींव पत्थर नहीं लगाते, बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में हम जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर गए, तो उन्होंने जो है सबसे पहले तो जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया
1: जी
0: और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। और उसके बाद बालोतरा में गए, जहां उन्होंने 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया और कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये जो एक हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आज जो भी कार्यक्रम हुए उनमें शहरी विकास, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों और ये ऊर्जा के नए स्रोत, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे प्रोजेक्ट जो थे आज विकसित भारत की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जा रहा है, उसी कड़ी में ये अलग अलग योजनाओं का जो आज हमने देखा कार्यक्रम हुआ। और उसमें से मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण था कि राजस्थान के बालोतरा जिले में देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटेग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र के नाम समर्पित किया उन्होंने, और उन्होंने इससे भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत
1: जी
0: महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। तो इस तरह से आज राजस्थान का जो दौरा हुआ उसमें अगर हम बात करें तो एक एक कार्यक्रम को हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया
1: जी
0: वो बहुत महत्वपूर्ण था।
1: जी
0: तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बात भी यही कही कि जो राजस्थान में जो आज मैं ये कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूं मैं पेट्रोकेमिकल का, क्योंकि आज के संदर्भ में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसने जंग में भी ये बात दिखा दी कि पहले हम जो तेल था कम देशों से लेते थे,
1: जी
0: अब हमने अपनी डिप्लोमेसी को देखते हुए उसका दायरा बढ़ाते हुए अब हम 40 देशों से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे जो मित्र देशों के साथ संबंध हैं उसको उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान हॉर्मुज बंद हो गया था और दुनिया भर में बड़े संकट आ रहे थे, और लेकिन हमारे प्रयासों ने हमें संकट से उभरने के लिए भी मदद की, और इसीलिए पूरी दुनिया में इस लड़ाई के चलते हमारे पर जो असर हुआ,
1: जी
0: भारत ने सही फैसले लिए और सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल किया, और इसी वजह से भारत इस संकट से उभरने में सफल रहा। और
1: टंडन
0: भारत
1: जी,
0: ने इस संकट का समय रहते आकलन किया था और इसीलिए हम उसमें से उभर कर आए।
1: जी टंडन जी, एक तरफ भारत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा जैसी हरित परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। तो ये जो संतुलित ऊर्जा नीति सरकार अपना रही है, तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बड़ी सामर्थ्य के रूप में उभर कर सामने आएगी?
0: बिल्कुल, ये जितनी भी योजनाओं की बात हमने की है उसमें जैसे अपने ने बात की अभी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो था ही रिफाइनरी वाला, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम से ये जिस रूप में विकसित हुआ है, इसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसमें लगभग 80,000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है।
1: जी,
0: और उत्पादन की क्षमता की हम अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल क्षमता जो है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, और इस रिफाइनरी का जो कुल मिलाकर उत्पादन है वो 26% जो है वो बड़ा है, और ये जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तो इसी ऊर्जा के संबंध में पेट्रोकेमिकल की तो हमने बात की, आपने जैसे कहा कि सौर ऊर्जा की भी बात की है प्रधानमंत्री ने, और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि राजस्थान पे तो सूर्य देवता की बहुत कृपा रहती है, और इसीलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का है 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया,
1: बिल्कुल
0: और इससे लगभग 5,500 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है, और इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री ने ये जो 300 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र के साथ समर्पित किया, तो इससे स्वदेशी रूप से निर्मित 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
1: जी टंडन जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उनकी कही गई इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उर्वरक संकट भी देखा गया है बीते दिनों में।

0: वैश्विक स्तर पर और दुनिया भर में यूरिया महंगा हुआ, लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह के जो फैसले सरकार लेती है, क्या लगता है कि इनका किसानों और कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक सकारात्मक असर पड़ता होगा?
1: मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल उत्पादन की बात है, इसमें पेट्रिकल जो इसमें जो कुल मिलाकर सारा इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जो बात की गई है, उसी में देखने को ये मिलता है कि पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक पार्क के विकास के एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेंगे। तो इससे उद्योगों में और जैसे आपने कहा कि उर्वरक इत्यादि में भी उनके उत्पादन और हम जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार इस पर बहुत ही महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग समय पर योजनाओं को लागू करते हैं, तो देश में ऊर्जा संकट जो है और जैसा कृषि में भी हम देखते हैं कि उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ये सब देखने को मिला।
0: राजस्थान में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ युवाओं के विश्वास को बढ़ाने का एक अवसर नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करना, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहता है, तो आप किस पर क्या विचार होंगे?
1: देखिए, आज जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वो चुनकर आए, यानी उनकी नियुक्ति जो हुई इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी क्षमता से उसके टेस्ट पास किए, और ये राजस्थान के लगभग सरकार के लगभग सभी विभागों से जुड़े हुए, और हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि सब नौजवान जो है वो 20 और 25 साल की उम्र के थे और उनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री से जब मिले तो वो गदगद हो रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ लोगों से बात भी की। तो ये जो समस्या रहती है कि भारत में जो है हम लोग रोजगार सृजन करने के बारे में बात करते हैं नौकरियों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाली बात करें, तो स्टार्टअप के जरिए। लेकिन सरकार के पदों पर भी जो नियुक्तियां होती हैं, तो राजस्थान सरकार के पदों पर जो नियुक्तियों के आज 54,000 दिए गए नौजवानों को नियुक्ति पत्र, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था।
0: टंडन जी, अब गुजरात की हम बात करते हैं, तो गुजरात में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है, OSAT सेमीकंडक्टर संयंत्र का शुभारंभ होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
0: भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, तो इस संयंत्र का शुभारंभ होना हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता होगी?
1: भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है, ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। क्योंकि ये जो परियोजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, उस मिशन के तहत स्वीकृति पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है
0: जी।
1: और अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ जब संचालन में आ जाएगा तो इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप की होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ऐसा संयंत्र है, ये ऑटोमेटिव, औद्योगिक, दूर संचार, 5G, इंटरनेट और इन सब क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है और उस क्षेत्रों के जो ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। क्योंकि चिप की कमी के बिना, चिप की कमी होने से इन सब क्षेत्रों पर असर पड़ रहा था और अब ये जो संयंत्र, ये वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइनिंग और विश्लेषण, टेस्ट प्रोग्राम, ये सब निर्धारित और इन सब को ये सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं जो है, ये जो आज संयंत्र प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है, ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में भी प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है ये उसके अनुरूप भी हुआ।
0: जी टंडन जी, गुजरात को वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई सारी परियोजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही है, बुलेट ट्रेन की भी हम बात करते हैं, वहां उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जो हर बार नई योजनाएं शुरू की जाती, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाता, उद्घाटन किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, गुजरात की बात तो है ही है क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, लेकिन जितनी भी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने लागू की हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी, सभी का, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो जो परियोजनाएं देश की भागों में की गई है, चाहे वो पूर्वोत्तर का भाग हो चाहे दक्षिण भारत हो, उन सब में जो परियोजनाएं लागू की जाती हैं वो पूरे समय पर ही हुई हैं। तो गुजरात थोड़ा, जैसे प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे कि हमारा जो पश्चिम क्षेत्र है भारत का वो तो विकास की दर से बहुत आगे है, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हम देखते थे कि पूर्वोत्तर के राज्य तो से ही, लेकिन बंगाल उड़ीसा ये राज्य पिछड़े थे, बिहार था झारखंड था, उनके भी विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन पूर्वी राज्यों को भी अब पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में लाकर खड़ा किया गया है। और ये सारी योजनाएं जो है हर देश के हर प्रांत में लागू की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी राज्य हो, इसमें कहीं भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं जब इनका शिलान्यास होता है तो इनको पूर्ण भी, इनको इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री उसी समय सीमा के अंदर करते हैं। यही उनका निर्देश भी है कि जो भी मुझसे लोकार्पण करवाना है या जिसका मुझसे आपने नींव पत्थर लगवाया है उसकी योजना को पूरा भी मेरे से ही करवाएंगे, तभी मैं उसके लिए आगे आऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो अप्रोच है विकसित भारत की ओर बढ़ने की, उसमें सभी प्रदेशों के साथ न्याय हो रहा है और देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको ये शिकायत हो कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
0: जी टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का गीत। आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार नीरज और संगीत है ST बर्मन का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से। आशा भोसले की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं कारवां फिल्म का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना कारवां फिल्म का गीत। आशा भोसले की आवाज़ थी। मजरू सुल्तानपुरी का गीत था और संगीतकार आरडी बर्मन थे। अगला फिल्म संगीत में हम जो गीत लेकर आए हैं, फिल्म है सरस्वती चंद्र। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर, और शब्दकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं और हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हो चुके हैं। फिल्म संगीत में अगला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, प्रेम कहानी फिल्म का, और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पत्थर की सनम इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आखिर में आपने सुना सड़क फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में, समीर का गीत था और नदीम श्रवण का संगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात के 8:45 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप

0: तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल, 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माचलिस्त सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है।

0: कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे। और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं। वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार, साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में।

0: चंद, कुछ अनपढ़े, कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
1: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं, और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
0: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
1: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है, और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है प्रेक्षकत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है, और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को ठोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था, और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाठ साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाठ साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और

0: फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता यह है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं दिनकर, राष्ट्र के हितकर। वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बार डोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाए तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्यकृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभति उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी। अपने

0: समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हो, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खान जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: खयाल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said that ethanol blending program was placed in the public domain for a structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
3: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
2: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्स, एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की अंतिम प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर अपने विविध कार्यक्रमों के साथ इन्हीं मीटरों पर हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सभी श्रोताओं से हम अनुमति चाहेंगे।